प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर

RM3 Vanuli.

0: మోసం అంటే ఏందో తెలియని వయసులో నేను ప్రేమించినాను.
1: రుబరు
2: సకాల్ బీట్స్
3: సకాల్ బీట్స్
2: संगीत प्रेमी श्रोत्यानो नमस्कार सुप्रभात सुस्वागतम मी आशा करते की आपण ठीक आहात मजेत आहात अँड जिगरी करत आहात ऑन आवर एम फ्री मनोरंजन रेडिओ. तर सिखो तासाचा धमाल कार्यक्रम आहे 10 वाजतापर्यंत तुम्हा सगळ्यांच्या मनोरंजनासाठी. तर सिखो साध्या कार्यक्रमाचा शेवटपर्यंत. तर सिखो आरंभ करूया आजचा आपला कार्यक्रम बाप्पाचा जय जयकार करून.

शक्ति भक्ति में शक्ति कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम करजोड़ अभिवादन करते हैं। ये RM3 रेडियो का प्रसारण है। माइक पर आप सभी का साथ दे रही है रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार, करजोड़ वंदन और अभिवादन स्वीकार करें। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं इस प्रथम गणेश भजन द्वारा।

श्रोताओं, आज बुधवार का दिन है और बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित दिन है। तो आज का दिन गणेश भजनों से इस यात्रा को हम आगे बढ़ा रहे हैं।

श्रोताओं, परीक्षा संसार की करें, प्रतीक्षा परमात्मा की करें और समीक्षा अपनी करें, पर हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम परीक्षा परमात्मा की करते हैं, प्रतीक्षा सुख की करते हैं और समीक्षा दूसरों की करते हैं। इसीलिए सदा हम दुख के घेरे में रहते हैं। परमात्मा पर असीम श्रद्धा होना अति आवश्यक है।

श्रोताओं, जब कोई सहायता मांगे तो सहायता देनी चाहिए। कदाचित उसने ईश्वर से प्रार्थना की हो और भगवान ने उसे आपके रूप में भेजा हो।

श्रोताओं, बोलने से कठिन होता है श्रवण करना, सुनना, और सुनने से कठिन होता है उसे सहना। लेकिन सबसे अधिक कठिन होता है सहकर भूल जाना और सामान्य रहना, किसी को क्षमा कर देना। क्षमा करने के लिए भी बहुत बड़ा हृदय चाहिए, जो सरल नहीं होता। पर जो ऐसी भावनाओं को पाल सकते हैं, क्षमा का भाव अपने मन में रखते हैं, विशेषकर उनके प्रति जो उन्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं, ईश्वर उसे बहुत बल और साहस प्रदान करते हैं।

0: तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो चला है। ईश्वर सभी का कल्याण करे। बस हरि का नाम सुमिरते रहें और हरि हमें सही मार्गदर्शन सदा देते रहते हैं। इस पर ईश्वर पर सदा भरोसा रखना है, श्रद्धा रखनी है और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे संतिम भजन द्वारा।
1: हरि नाम सुमिरते।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी।

0: सभी को नमस्कार अब सुनते हैं अदिति से संक्षिप्त समाचार अदिति आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम श्रोताओं को भी नमस्कार हजारों पुरुष महिलाएं और बच्चे कभी बेहतर जीवन की तलाश में समंदर पार कर गए थे और अपने पीछे निर्वासन साहस और दृढ़ता से भरा इतिहास छोड़ गए थे आज भी शर्त बंद मजदूरी की विरासत दुनिया भर में शोध और चिंतन को प्रोत्साहित करती है आज से 15 मई तक अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड मॉरिशस विश्वविद्यालय में इंडेंटर लेबर रूट पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है ये इसका चौथा संस्करण है तीन दिनों के अंतर्गत कई देशों के विशेषज्ञ और शोधकर्ता इस सम्मेलन में भाग लेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र

0: क्षेत्र में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन सरकारी नौकरी स्तर पर हिंसा कर्मचारियों की कमी और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के कारण बिगड़ती कार्य परिस्थितियों को लेकर चिंता जता रहा है। पोटली में कल लगे एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ ने अस्पतालों में हिंसा के बढ़ते मामलों की कड़ी निंदा की। संघ के अध्यक्ष अमरजीत सितौल पुलिस और अन्य विशिष्ट इकाइयों की समन्वित उपस्थिति के साथ सुरक्षा मजबूत किए जाने की मांग कर रहे हैं। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के अंतर्गत कल कई राउंड टेबल चर्चाएं हुई। 7 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श चला, जिसमें से एक ब्लू इकोनॉमी रहा। इस राउंड टेबल की सह अध्यक्षता सेनेगल के राष्ट्रपति और मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने संभाली। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने मध्य पूर्व में तनाव के समुद्री यातायात और व्यापार मार्गों पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आश्वासन दिया कि एमवी होंडियस क्रूज जहाज से यात्रियों को निकाले जाने के बाद हंटा वायरस का कोई भी वृहद फैलाव दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन WHO के प्रमुख का कहना है कि किसी भी समय हालात बदल सकते हैं, इसलिए सावधान रहने की अनिवार्यता है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। नंबर 6 अडोल्फ ओलांडो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट में 73 साल की 73 इयर्स ओल्ड श्रीमती राधा सूर्या पैदाशी नाम गणेश, जो मानती प्रोफेसर योगा नाम से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके पति श्री विवेक जय सूर्या के मकान नंबर 6 अडोल्फ ओलांडो स्ट्रीट ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोविया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रीमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना।
1: You're listening to RM3 Radio.

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, सुहाना सफर वो सफ़र है जहाँ पे हमारे सारे हम सफ़र हमसे जुड़ जाते हैं। कुछ बस थके होते हैं, कुछ हारे होते हैं, कुछ प्यार में होते हैं, कुछ दीवाने होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें अपनापन मिलता है, कुछ ऐसे लोग होता है जिन्हें हम अपना बनाते हैं। तो हर तरह से हम एकदम एक फैमिली की तरह आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, सुहाना सफ़र प्रोग्राम के सभी का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। यादों का ये खूबसूरत सफर है जहां पर हम लेकर आए हैं यादों की ये खूबसूरत बारात।
2: RM3 रेडियो रेडियो रेडियो

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: भाई गाने में तो मरने की बात कर रहे हैं कि प्यार का वादा ऐसे निभाए तू भूले तो तू मर जाए, मैं भूलूं तो मैं मर जाऊं, ऐसे कोई मारना थोड़ी है, है? इसे तो दुश्मन पाल लो। प्यार ऐसे थोड़ी ना होता है, जो प्यार करने वाले होते हैं ना वो प्यार को खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर वो चला जाता है ना जो प्यार, वो आपका कभी था ही नहीं, है ना। तो ऐसा करते हैं, प्यार की तलाश हम यहाँ पर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो दोस्त हैं एक बार आ जाते हैं सुहाना सफ़र का हिस्सा बन जाते हैं, फिर कभी लौट के वो दोबारा मुड़ के पीछे नहीं देखते, बस हमारे साथ चलते रहते हैं। चलिए यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले वेलकम करते हैं देवीना का, और गाना हो क्या आपके बेटे वैष्णव के लिए, वैष्णव छोटी, है ना। आज उनका बर्थडे है, 24 साल के हो गए हैं, सो उनको हैप्पी बर्थडे। हमारे साथ है कविता, दीप्ति, कीतिका एंड वी हैव शाहिद फ्रॉम पाकिस्तान, आपका हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शामिला चुनीलाल हमारे साथ, और वैसे शाहिद ने गाने की फरमाइश की है फ्रॉम द मूवी बॉबी, वो गाना मैं थोड़ी देर में चलाऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट गाना लीना जी आपके लिए, नमस्ते, आपका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हेलो भेजा है, लेकिन अपना नाम कभी भेजते नहीं है। चलो देखो, वीमी ने कहा हेलो, मुझे उनका नाम नज़र आ गया। आर्या हमारे साथ है, उनका नाम नज़र आ गया। मिमी कहती है नमस्ते, तो आप लोग भी प्लीज़ अपना नाम भेजिएगा। यहाँ पर सभी चौथी फैमिली की ओर से जो मोहताज ब्लाउंस रहते हैं उनकी तरफ से बच्चों को बहुत सारा प्यार है और हैप्पी बर्थडे। चलिए जी, नमस्ते वेदू, ये हैं एजे, वहीं पे खुशी हमारे साथ हैं, क्या बात है, हेलो सनशाइन। ये है यश, जो कि आज काफ़ी नॉडी मूड में हैं, लेकिन हमारे साथ है और हमेशा कोशिश करते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम चले तो इसमें अपना प्रेजेंस ज़रूर दे। तो चलो ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों, थैंक यू सो मच। और पूजा हमारे साथ, कैसे हो पूजा जी। और किसी ने कहा नमस्ते जी जी, ये है प्रेमा का हेतु, थैंक यू। और कहते हैं कि हमारी मेहमान नवाजी करती हैं, अपना मेहमान समझती हैं, और हम पाकिस्तान से, अरे भाई हम मॉरिशन हैं, यहाँ पर हम सबका वेलकम करते हैं और सबको प्यार से यहाँ पर एक फैमिली बना के रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट गाना हो जाए।
2: RM3 Radio, Radio, Radio.
1: गाना है आपके लिए मुकेश साहब की आवाज में।
3: चंचल

0: सुहाना सफर
1: चलिए सुहाना सफर प्रोग्राम में अब कुछ और नाम जोड़ लेते हैं. शारदा इज सोल, वी हैव अनिल, फिया जी ने गाने की फरमाइश की है, उसे अभी हेलो टू अवाना, संजय ओमी प्रणाम, माधुरी, रिया, तस्लीमा, स्वागत है आपका, इंदिरा, विकिंग, शारदा लखनऊ, जीतन दुलवा, अनिष्ठा जी कैसी हैं आप. तो यहाँ पर गाना अनिष्ठा जी आपकी सासू माँ विमला राम प्रसाद के लिए जो रहती हैं प्लंदी पापा, आज उनका जन्मदिन है तो उनको बहुत सारा प्यार है और उनको हैप्पी बर्थडे हम सब की तरफ से. शालिनी, नीरव, रवि, सुरेखा, समीरा, येश्वरी, नीलिमा, इन सब का हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में. और नीलिमा कहती हैं कि कोई भी प्यारा सा गाना मेरी मम्मी रेनू के लिए जो पालमा रहती हैं. वहीं पेजे कहती हैं कि एक गाना अंजू, परी, मनीता के लिए प्लीज़ मेरी तरफ से डेडिकेट करना ज़रूर. और दीप्ति कहती हैं कि भाई कौची मिले थे मैं तो बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, इसलिए सबको अपना ख्याल रखना पड़ेगा. जी बिल्कुल. और यहाँ पर इंदिरा जी कहती हैं कि गाना मेरे लिए और गाना जो है आपके लिए और आपके दोस्त प्रकाश के लिए भी. तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं. यहाँ पर काफ़ी सारे गाने की फरमाइश आई हैं और हम कभी कभी होता है कि हम भूल जाते हैं गाने, ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ढूंढ लेंगे. चलिए तो यहाँ पर तनु श्याम हमारे साथ हैं, नमस्कार, थैंक यू सो मच. देवांश एक्वायो से है, दादी माँ सीता और साथ में श्वेता के लिए. वहीं पे अनुराधा बसगीत, नमस्कार. और समझ में नहीं आया मैसेज लेकिन फिर मैं कोशिश कर रही हूँ. रेखा जी नमस्ते, आपका स्वागत है. और कल कहते हैं मेरी नीस का बर्थडे है, उनको हैप्पी बर्थडे. रीना हमारे साथ हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मैसेज ऐसे भी आए हैं. सुल्ताना खंदाई, कैसे हो भाई, बहुत दिनों के बाद लग रहा है मुलाकात हो रही है. मनोज जी नमस्कार, स्वागत है.

0: सुहाना सफर सुहाना सफर प्रोग्राम है सुहाना सफर और सफर में हम सफर बनने के लिए आ गए हैं फ्रांस से हमारे दोस्त मिस्टर रेदीन बुराही और साथ में साहिल जयप्रकाश सुल्ताना कांदाय और हमारे साथ है नीत रागिनी अंजू नंदिनी उनके दामाद विनाश के लिए अगला गाना मांग रही हैं तो चलिए अगला गाना उनके लिए विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे हमारे साथ हैं थामुथरन हमारे साथ हैं बिंदु मरियम सोनल रुकैया गजवी से हैं उनके फ्रेंड नताशा के लिए गाना मांग रही हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे है सो नताशा को हैप्पी हमारी ओर से मनीता सूबी सिमरन तनवीर और वीर भी हमारे साथ जुड़े हैं दीपक बिहारी जी का हम स्वागत करते हैं और साथ ही साथ यहां पर गाना होगा आशा लखनौत आपके लिए और साथ में गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हमारे उन दोस्तों के लिए जो इस समय लंच कर रहे हैं तो आपको कहेंगे बना पेची और साथ में जो ड्राइव कर रही हैं देखो आराम से ये टाइम थोड़ा सा हैवी होता है क्योंकि सबको भूख लगती है सबको खाना खाना होता है और चलो कोई नहीं आपको बना पिछे और गाना हमारी ओर से
1: You're listening to RM3 Radio

0: listening RM Free Radio. Radio.
1: जब तुम चले जाओगे तो याद बहुत आओगे, लेकिन हम अभी गए नहीं, हम तो यहीं हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि आप साथ ज़रूर देना। लक्ष्य और कल्याणी हरी साथ में देवीना ननकू के लिए, चलिए हम चलाते हैं ये प्रोग्राम का अगला गाना। साथ ही साथ शाहिद कहते हैं कि शाहिद इकबाल खान कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से हमारे एक और दोस्त हैं इमरान, वो भी आपको हेलो बोल रहे हैं। हेलो इमरान।

0: RM3 Radio.
1: अगले गाने के साथ अनुपमा फंसलिया गया है। हम बढ़ते हैं 1 बजे के समाचारों की ओर, मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: टाइम चेक दोपहर के 1 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को नमस्कार और आदाब। सुनिए संक्षिप्त समाचार। नैरोबी में कल रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के समापन समारोह में

0: भाग लिया। कई सरकारी नेताओं ने भी इसमें भाग लिया है। वहां पहुंचने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों ने मैत्रीपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम के साथ बातचीत की। इस शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसके माध्यम से अफ्रीकी महाद्वीप के लिए 23 बिलियन यूरो का निवेश जुटाया गया है और कई साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस शिखर सम्मेलन में एक अधिक मजबूत, अधिक लचीले और विशेष रूप से अधिक आत्मनिर्भर अफ्रीका पर भी जोर दिया गया। साथ ही महाद्वीप की विकास यात्रा को समर्थन देने के लिए अफ्रीकी वित्तीय तंत्रों को विकसित करने की बढ़ती इच्छा पर भी बातचीत चली। समापन समारोह के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों ने प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम का आभार व्यक्त किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से सामूहिक अत्याचारों की स्थिति में अपने वीटो अधिकार के वॉलंटरी सस्पेंशन की अपील करने वाली फ्रांसीसी मैक्सिकन पहल में मॉरिशसीय गणराज्य के शामिल होने के निर्णय की सराहना की। नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बिल कल शाम राष्ट्रीय सभा में सुधार के साथ पारित किया गया। ये विधेयक नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रावधान करता है, जो मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल एक्ट का स्थान लेगा। नए कानून का उद्देश्य मंत्री कविराज सुकों के अनुसार नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक आंकड़ों और विश्लेषण पर आधारित नीतियों को मजबूत बनाना तथा मॉरिशस को एक अधिक लचीली, प्रतिस्पर्धा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करना है। विदेश की खबरों में भारत के मध्य और पश्चिमी राज्यों में गर्मी की लू की चेतावनी जारी की गई है, जहां तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहां के मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि 18 मई तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर भारत के उत्तरी राज्यों में तूफान और भारी बारिश होने लगी है। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। लतापी रोड भिजेवेजिया में 77 साल की 77 years old की श्रीमती तारामती लौतन, पेराशिनाम जा ग्रुप और जो तारा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके मकान लतापी रोड भिजेवेजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदमास्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। शिवाला रोड खाथोसेवा में 76 साल की 76 years old की श्रीमती बिद्वंती गिरधारी, जो बिद्वंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके मकान शिवाला रोड खाथोसेवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM। अडल्फ होलांड स्ट्रीट ग्रैंड रिवियर नॉर्थ वेस्ट में 73 साल की 73 years old की श्रीमती राधा सूर्या, पैदाशी नाम गणेश और जो मानती प्रोफेसर योगा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उठाई जा रही हैं। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv.
2: RM3 Radio.

0: मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में बिखर जाओगे. भाई यहाँ पर आग तो वैसे भी लोगों के पेट में लगी है क्योंकि लंच टाइम है ना.
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके,

0: खोने की इतनी चाहत हो रही है सभी को कि काश हम कमरे में रहे, बाहर ना आए, काम पर जाना ना पड़े, खाना बनाना ना पड़े।
1: सुहाना सफर
0: प्रोग्राम है हमारा, 1:16 और यहाँ पर जो दोस्त हमारे साथ हैं इनका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ हैं कियाना, राजश्री, मैक, आदेश, यासिन, विमला और आस्था ने कहा है कि उनकी दोस्त आश्मिता के लिए गाना हो जाए। नुष्का वेलकम करते हैं, तरुण राम को कहेंगे वेलकम, साथ में सुधा, और ये गाना सुधा की तरफ से मौसी के नाम जाएगा। अच्छा, मौसी सुधा है या कुछ कन्फ्यूजन हो गया? कोई बात नहीं, मौसी सुधा के लिए गाना होगा। अश्विना चिमल, साजिद, माया रामदोस, शनाज, लैला मदारन, साथ में सरेना, उम्मीद आमिये मलेशिया से साथ दे रहे हैं, हेलो। चलिए जी, यहाँ पर खुशी हमारे साथ खुशी खुशी जुड़ गई हैं। सोनम, साधना, मोहम्मद सलमान, साथ में ही गाना जाएगा आपके लिए। प्रकाश मेधा और सरूप फैमिली सुल्फिनों से, परी, भूमि, ललिता, आयान, जय।

एक दूसरे से पूछ कर कन्फर्म करें कि ये प्यार है कि नहीं है, जब कन्फर्म हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज चलिए यहाँ पर हम खत लिखने में एकदम माहिर हैं, प्यार का एक खत आपके नाम। और ये गाना हम सारा दाऊ के लिए दिनेश गोपी और साथ में वैदेही के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। और वेलकम करते हैं मिस्टर युक्साली जी का जो इस समय हमारे साथ हैं। हेलो जी, और यहीं पे गाना होगा विनय गंगाराम आपके लिए।

0: चलिए जी, प्रोग्राम का हमारा नेक्स्ट गाना होगा विकी रजनी मोहाबीर यश जो कि है फ्रॉम लिवरपूल इंग्लैंड, साथ में नीरू अंश पैमला मनोज पिर्थिया और आशा जी के लिए और मिस्टर राम जो कि हमारे साथ हैं उनके नाम डेडिकेट करते हैं। स्पेशली ये गाना जाएगा हमारे प्यारे दोस्त आंतिश के लिए जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम स्विट्जरलैंड।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए जी, सुहाना सफर प्रोग्राम में एक और खूबसूरत सा गाना अभी हम शामिल करने जा रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम का जो अगला गाना होगा, कहते हैं कि भाई चंदन साबदन चंचल चितवन, मुकेश साहब की आवाज़ में सरस्वती फिल्म का ही, सरस्वती चंद्र फिल्म का ये गाना याद है आपको? चलो, मुझे लगता है कि याद तो होगा ही और आप लोग इस गाने को ज़रूर पसंद करेंगे। तो ये गाना हम नाज़ियाना आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे और यही गाना हम सभी हमारे दोस्तों के लिए, वैसे दान हमारे साथ हैं उनके नाम डेडिकेट करते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव लाइक पैमेला जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पैमेला वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। एंड यहाँ पर नितिश कहते हैं कि टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, कौलेसर फैमिली, ये है नितिश जो कि अभी साज हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनके लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर गाना होगा अनुराधा आपके लिए, थैंक यू, कहते हैं लवली सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। अनीता प्रताप हमारे साथ है एंड आपके लिए भी नेक्स्ट गाना होगा और यही गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए। ललिता, कैसी हो ललिता? एंड आल्सो सिया के लिए जो साथ दे रही हैं।
2: यू आर लिसनिंग आरएम फ्री रेडियो, रेडियो, रेडियो

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चलिए अगला गाना देवी नाजियाना और रागिनी जी आपके लिए और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।

0: अपने प्यार के सपने सच हुए और यहाँ पर कितने सारे लोग हैं जो सपने सजाए बैठे हैं। चलिए देखते हैं कि अगला गाना किसका सपना हो सकता है।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर
0: प्रोग्राम है सुहाना सफ़र, और इस सफ़र में हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ कई सारे दोस्त हैं जो हमारे गीतों को एंजॉय कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। और साथ में जो अभी अगला गाना हम लेकर आए हैं, ये गाना जो है हमें लेकर जा रहा है बस 2 बजे के समाचारों की ओर। आपसे यही कहूँगी कि आपके साथ बिताए हुए हर एक पल, हर एक लम्हा में बहुत अच्छा लगता है। चलते चलते यहाँ पे जो अगला गाना होगा, पॉल वनेसा, सारदा, ज्योति, शाय, अनुषा एंड सरोज के लिए आराध्या, दैट्स कूल, मधुबाला, वाहिदा, लीना, रिधि, ज्योति, तनवीर, बॉम्बू से साथ दे रही उनके लिए होगा। मेरे जाने का समय हो गया है। थैंक यू सो मच गाइज। अब हम आपसे मिलेंगे कल 12 बजे इसी प्रोग्राम में, जहाँ पर आपके लिए होंगे इतने खूबसूरत प्यारे गाने। थैंक यू सो मच शेफ पद्मा और सैन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बस मिलते हैं अब हम आपसे कल। अपना ख्याल रखिएगा। संजय बुधु, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं कविता जी कल। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार आपके लिए और आपको बहुत सारा प्यार।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। नैरोबी में कल रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के समापन समारोह में भाग लिया। कई सरकारी नेताओं ने भी इसमें भाग लिया है। वहां पहुंचने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मैत्रीपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से बातचीत की। इस शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों पर विशेष रूप से चर्चाएं की गई, जिसके माध्यम से अफ्रीकी महाद्वीप के लिए 23 बिलियन यूरो का निवेश जुटाया जा सका है।

0: कल देर रात इन्फ्लुएंसर अली रॉयल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के बाद ऐसा किया गया। कंटेंट क्रिएटर पर भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग के मामलों से लाभ उठाने की कोशिश करने तथा कुछ फायदे हासिल करने का संदेह है। सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय कौंदेमास्क के निवासी अली बुलाकी, जिन्हें उनकी असली नाम से जाना जाता है, पहले से ही एक बेहद विवादित शख्सियत रहे हैं। उनका नाम अक्सर पूर्व सरकार के करीबियों के साथ जुड़ा जाता है। उन्होंने उस एक वीडियो बनाया था, उन्होंने इस वीडियो को लेकर भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थीं, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि प्रसिद्ध मिसिय मुस्तास ऑडियो क्लिप को तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था। उन्हें आज सुबह फ्लाक की अदालत में पेश किया गया। नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बिल कल शाम राष्ट्रसभा में सुधार के साथ पारित किया गया। ये विधेयक नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रावधान करता है, जो मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल एक्ट का स्थान लेगा। नए कानून का उद्देश्य, मंत्री कावी राजसुको के अनुसार, नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक आंकड़ों और विश्लेषण पर आधारित नीतियों को मजबूत बनाना तथा मॉरिशस को एक अधिक लचीली, प्रतिस्पर्धा और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करना है। विदेशी खबरों में भारत के मध्य और पश्चिमी राज्यों में गर्मी की लू की चेतावनी जारी की गई है, जहां तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आमतौर पर ऐसा वहां पर नहीं होता है और इस मौसम के दौरान वहां पर गर्मी नहीं होती। वहां के मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि 18 मई तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉय रोड लिस्कालिये में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री परमानंद उचाना, जो हामुती के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे संजीव उचाना के मकान रॉय रोड लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लासोजिन लिस्कालिये की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। शिवाला रोड 4 सौ में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिदवंती गिरधारी, जो बिदवंती के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके मकान शिवाला रोड 4 सौ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: RM3 Radio, Radio.
3: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से, तो आओ भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे।
4: नमस्ते, धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में आप सब लोग के स्वागत बा। हमें अरविंद, साथ में हमनी के तकनीकी सहयोगी संजू तुकुगी, आज हमनी के कार्यक्रम तैयार करे में हमनी के सहयोग दुआ थुआ बहुत स्वागत बात लोग के। और जैसे जनबे करेला हमने के जो कार्यक्रम है धरोहर के सरोवर, ई मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और महात्मा गांधी संस्थान के भोजपुरी लोक विभाग दिने से तैयार करल जात बा। तो लोग के बोली रजा फिर से बोला थी जा कि मॉरिशस में भोजपुरी के पढ़ाई हुआ था, कहाँ पर ही हुआ था तो लोग के बताए ना जा। देखा अभी हम के बैठका लोग में लड़का लोग के भोजपुरी सिखावल जात बा, और हमने महात्मा गांधी संस्थान देने से कोशिश कर लजा कि जो सामग्री चाहेला वो सामग्री तो लोग के तो लोग तक सकब्जा पहुंचाई। अये जाहे जा परी अध्यापक लोग, अध्यापिका लोग तो लोग के सकब्जा ई सामग्री दे, तो अपन लड़का लोग के सकब्जा सुनाए, सकब्जा पढ़ाए, ताकि तनी तनी तनी लोग भोजपुरी सीखबे करी। अब ये देखा हमारे हाथ में भी एगो पुस्तक चलाल, ई पुस्तक के नाम है भोजपुरी टीचर्स हैंडबुक स्टैंडर्ड

1. The standard 1 yani grade 1 ke laika lo khatir e pustak taiyar karal gal ba jo tolo ke laika lo khatir bahut kaam aaye e chalte hum dhanyawad dewab e sab team ke jo log e pustak taiyar kare mein humne ke sahyog dil ho anja jise coordinator hum aaye aur Dao Singh ji rahlan Jay Ganesh humi ke panel mein rahlan ja Dr. Mrs. Bhagat Ram Yad Gautami Dr. Hemraj Sundar Dr. Lal Vihari Jaichand डॉक्टर संध्या आंचराज फिर साथ में श्रीमती जिंगन योगेश्वरी लोडा ब्रिजलाल जी रहल चंद्रदेव ओबिलक लालधन सिबुआ जी रलंजा ये सब मिल के एक पुस्तक तैयार करल गल बा और एकर में जो उद्देश्य बा कि लैका लोग के धला भोजपुरी से अवगत कराए के अब एकर में जो पहल का पाठ ही जो बा चंदा मामा जन्मे करेला चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुर के तू खैबा थाली में हमरा देबा प्याली में प्याली गल टूट मामा गल रूट प्याली लेलन औरु मामा ऐलन दौर एगो गीत बा साथ में एगो लोरी भी बा इता जन्मे करेला रे चंदा मामा आरे आव पारे आव नदी आ किनारे आव सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले आव बबुआ के मुआ में घुटूक सो जा बाबू सो जा इतना चलो के बोलत है जा एकर हमनी ऑडियो भी तैयार कर ले है जा एकर ऑडियो जन लड़का लोग के सब बजा सिखाए सुनाए और एकर कैसे बोला जाए संजोकर कहाओ की उगर

0: RM3 Radio. Radio.
1: अभी चर्चा कर रहे थे जब भोजपुरी पढ़ाई के लड़का लोग के खासतौर पर कम उम्र के लड़का लोग के तो ये जो पुस्तक महात्मा गांधी संस्थान में तैयार हुआ बा एकर में एक दो कहानी भी बा सिंह और चूहा के कहानी साथ साथ में एक दो कविता एक दो एगो सुन ला जाए जा लड़का लोग के धला जब बताए खोजबा शरीर के अलग अलग अंग कोची है तो एक में एगो बा चलक हिले सुन सुन तक ऐसे होला सुन सुन सुन कान से सुन तई जब लड़का लोग के जब ई बोलबा दोहराए के तो लोग के बोलबा लोग के कान पकड़े के तो लोग जानी कि कान माने हमनी के कान फिर बोलबा देख देख देख कुछ से देख संजू कुछ से देखबा आंख से देख देख देख देख आंख से देख बोल बोल बोल मुंह से बोल गिन गिन गिन कुछ से गिनबा उंगली से कैलकुलेटरी से नहीं गिन गिन गिन उंगली से गिन दे दे दे हाथ से दे चल चल चल गोर से चल तो ई सब लड़का लोग जानी गोर को ची है हाथ को ची है उंगली को ची है मुंह को ची है आंख को ची है नाक को ची है तो ऐसे लड़का लोग सकेंदा सीखे तो कविता बा ई पुस्तक में हयू में वो खेल के वो गीत बा हाथ ल हाथ द ई सकबजा लड़का लोग के धला लोग के अलग अलग तीन चार गो लड़का लोग रही लोग के बोलबा लोग के हाथ लेके से हाथ ल हाथ द आवा घेरा बनावा घेरा माने इसे गोल करके तो घेरा शब्द जान जी अंजा आवा घेरा बनाए बनावा नाच गावा खुशी मनावा हाथ खोला हाथ छोड़ा जोर जोर से ताली बजावा देखो खेल हो गल लड़का लोग की बोलबा आवा हाथ में हाथ आवा घेरा बनावा नाच गावा खुशी मनावा हाथ खेला हाथ खोला हाथ छोड़ा जोर जोर से ताली बजावा इस अंक के कुनल हिरीलाल के वो गीत याद चला तालीमार निकालो खुशी रे लाई गीत तालीमार तो ई हमने याद चर्चा कर थी जा ई पुस्तक पर जो लड़का लोग खातिन बनावल गलबा भोजपुरी के इकर में चंगन मैंगन के गीत भी बाजाने ला चंगन मैंगन पानी भरे पानी नहीं बा भला बाम्बू में डिग्री डाले पानी नहीं बा चंगन मैंगन पानी भरे पानी नहीं बा
2: धरोहर के सरोवर साप्ताहिक प्रोग्राम महात्मा गांधी संस्थान के सहयोग से तो आवा भोजपुरी सीखा धरोहर के सरोवर संगे

जब हम के ई पुस्तक तैयार करल गल लैका लोग के त एकर में एक गीत शामिल करल गल ई इरादा से कि ई गीत आप लैका लोग के सुनई बजा एकर में ढेर कुछ सकी हुई धला लैका लोग के जे खुजत हुआ पानी के महत्व के प्रति सतर्क करके त है गीत वा सब सुनाए और खेल खेल में बहुत कुछ सकी हुई तम के धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में भर सक कोशिश करब जाकि लैका लोग हथिन नौजवान लोग हथिन तनी तनी भोजपुरी से संबंधित बहुत कुछ अंते रह जा इसने महात्मा गांधी संस्थान में एगो पुस्तक तैयार करल गल बा मॉरिशस के भोजपुरी कविता संग्रह एन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ भोजपुरी पोएम्स ऑफ मॉरिशस गैल हलाइकर में से एक दुगो कविता ले रहे जा आज भी एक दुगो कविता ले जा प्रसिद्ध कवि मॉरिशस के जो महात्मा गांधी संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर रहलन डॉक्टर हेमराज सुंदर और जो हम के भोजपुरी पैनल में भी रहलन उनकर तीन गो कविता बा है, है पुस्तक में है कविता संग्रह में सुनी जाए कविता कविता के शीर्षक है बोल बोल के भोजपुरी आली लोग को सब चिनवा बोले भोजपुरी आली लोग को सब चिनवा बोले भोजपुरी ना त उ लोग के दुकान ना चली ये तो सच बात बा आली लोग को दुगो चिनुआ वो लोग भी भोजपुरी बोलत रंजा नहीं बोलते लोग के बुटीक नहीं चलत फ्रीमैन फ्री में सिखलक ई बोली फ्रीमैन नागाव के चर्चा करत हुन फ्रीमैन फ्री में सिखलक ई बोली जीरो से हीरो बनलन गा गा के गीत भोजपुरी माने पहले उकरा ढेर कोई नहीं जानत लन ई गीत जब गैलन तब बहुत ही लोकप्रिय होइलन डॉक्टर हेमराज सुंदर आगे लिखले हवन सोना रंभा हरी सब घूमलन जा देश परदेश गा गा के गीत भोजपुरी रेडियो टीवी हो या पॉलिटिकल रैली सब में सुने के मिलत बा भोजपुरी बोली बोल बोल के ही भोजपुरी बोली मिलल बा हमनी के आजादी बड़ी सुंदर कविता ई डॉक्टर हेमराज सुंदर लिखले हुवन ई कविता संग्रह में उनकर एगो और कविता बा तू कौन खेत के मूली चिनुआ बोले भोजपुरी मौला बोले भोजपुरी क्रिश्चियन बोले भोजपुरी हिंदू बोले भोजपुरी सबके सब बोले भोजपुरी तू काहे बोले ले नई भोजपुरी तू कौन खेत के मूली बहुत सुंदर बा और एगो भोजपुरी शनिका

डॉक्टर हेमराज सुंदर के, भोजपुरी कविता सब कोई सुनलक, न कोई थपरी बजेलक, न कोई देलक दाद, बांदर का जानी भला अदरक के स्वाद। हेमराज सुंदर जी के लिखल ई तीन गो कविता और साथ में एगो क्षणिका, तो देखला कितना सुंदर सुंदर कविता बनेला भोजपुरी संगे। भोजपुरी साहित्य ही के लेबा तो मॉरिशस में ई बहुत ही लोकप्रिय बा। वैसे हमनी के जो लड़का लोग सर्टिफिकेट इन भोजपुरी स्टडीज करेलन जा या महात्मा गांधी संस्थान में, वो लोग के दुगो मौजूल है, एगो भोजपुरी साहित्य के इतिहास और एगो मॉरिशसीय भोजपुरी साहित्य। कार्यक्रम के आगे बढ़ा जा एगो गीत के बाद।

0: RM3 Radio.
1: प्रेमेन नागा बहुत ही लोकप्रिय भोजपुरी गायक, भोजपुरी में गीत गेले हुन बहुत बड़ा बात है। लाली लाली कान प्लौतल सीमा में मकई, भोजपुरी के गो खूबसूरती ई भी है जे उ दूसर शब्द के अपन शब्द बना लेवेला। एकरा जैसे बोला से को पिजिन बोला जाए, एकरा गो धलब भाषा के जब गो खिचड़ी बनेला तो एक दुगो शब्द चलावेला इधर। अब जैसे प्लौतल, प्लौतल शब्द जनबे करेला, प्लौतल बोला प्लांटे के, और ई प्लांटे शब्द से निकल बा टू प्लांट इन अंग्रेजी में एकरा बोले जा, तो भोजपुरी ओकरा प्लौतल बना देलक। दम्बोर दम्बोर दम्बोर दम्बोर एगो बात बोले जाना कि मोताई के दम्बोर दम्बोर पीमा प्लौतल बा, भोजपुरी बतियानी परिकर में ऐसा ढेर शब्द बा जो क्रियोल भाषा से आल बा पर ओकरा भोजपुरी में मिला दे ले जा। यह भाषा के खूबसूरती और धरोहर के सरोवर कार्यक्रम में जन्मे करेला हमने भोजपुरी के कोनो ना कोनो चीज लेके आए ले जा, तो लोग के वो कविता के रूप में हो, वो कहानी के रूप में हो, जैसे भी चला ई लगे हाथ एगो छोटा सुन भोजपुरी किस्सा सुन ले जा।
2: एगो देश में एगो राजा रहल, उ राजा के सात गो रानी रहल, धन दौलत बहुत रहल, ओकर एको बाल बच्चा नहीं रहल। त जब आवे दान देवे सब भिकमंगा लोग के बात बोली, दान दे के का करब, हमरा सात गो रानी बा, एको बाल बच्चा नहीं बा। भीख मंगवा लोग के बड़ी चोट लगल, ओकर दिल दुखागल, हमनी गरीब दुखिया आदमी भीख मांग के जिही लास। तब वो भीख मंगवा वन में गल साधु के खोजे, जब साधु सुनलक बात ऐसे ऐसे बा, कौन दिशा में उ रजुआ बा, हम रजुआ के जाय भेंट करे। तब साधु आल आके जय मनैलक, सब रानी लोग निकलल। तब राजा के बोलन स उ आल बा ओकरा दान देवे के, साधु के बाद बोले लगल कि हमरा घर में बाल बच्चा नहीं बा, हम दान देके कौन ची करब। तब साधु बोललक नहीं तर कासे हुआ, कोनो चिंता के बात नहीं बा, बाल बच्चा होई। तब बोललक जा तोहर बगीचा में एगो गाछी बा आम फरल बा, जा अमवा तोड़ के ले अन्य। राजा जा के अमवा तोड़ के अनलक। तब साधु बोललक है अमवा ले के सातो रानी के दे के, कि उ बाट के खा ले सातो रानी के आम मिलल खाए की। ई में छह गो रानी निमन से अमवा खैलन स, अपन में बाट लेलन स, छोटकी रानी के नहीं मिलल। तब पूछलक अमवा कहाँ बा, उ लोग बोलन स हमनी खा लेली स, लापो फेकल बा घूरा में। गांव में सर्द के मौसम में आग जलावे खातिर इकट्ठा करल गल खर पत्ता सालते, छोटकी रानी जाके घूरा में से उठा के बैठ के उ लापो खैलक। अब साधु बाबा

चल गल इतना बोल के अब नई आवब तोहर महल संतान चल आए तो अब भारी गोर से हो गल छोटकी रानी। राजा दूर में काम काज करेला राजपात चलावेला। अब सोना के और चांदी के घंटी टंगावल गल और बजावल गल। जमे जब बाबा होय त दौड़ल आए राजा हकासल प्यासल दौड़ल आए राजा कि हमर रानी के बाबा होय। तब उनकर छोरनिया बहुत दुख देवे लगलन सा। छोटकी रानी पूछलक कि बाबा कैसे होय। उ लोग बोलन सा कि ओखरी मुसर में मुड़िया ढुकैब त बाबा हो जाए। छोटकी रानी के तब एगो बेटा और बेटी होल। ई छोगो रानी लड़कवन के मरमिट में भर के ले जा के घूरा में फेंक दिलन सा। त एगो ईंट एगो पत्थर उठा के रमास के आन के लपेट के रख दिलन सा और घंटा बजा दिलन सा। अब घंटा बजल राजा दौड़ल आए। तब बोलन सा तोहर रानी छोटकी रानी के एगो ईंट पत्थर होल बा। तब राजा बोले उफ ईंट पत्थर होल बा ओकर सब बार मुंडली कर द और ओके विदा कर द चिरई लखेदे के धार कारो में होइजे मरई में रही। तब छोटकी रानी कौवा हकनी बन गल चिरई के लेखा दे और होजे खाय उई के ले जा के देवत रहलन सा। तब एगो कुम्हार और कुम्हारिन अइलन सा माटी खोने। माटी खोदलन सा त देखत वन सा दूगो लड़का घूरा में रोवता। उठा पुठा के ले गइलन सा त पोसे लगलन सा। माँ बाप उ लोग हो गइलन सा कुम्हार और कुम्हारिन। पोसते पोसते धरल होइलन सा 7-8-9 बरिस। अब सीमा में खेलत होवन सा लड़कवन। तब सीमा पर है छोगो रानी लोग पासे होत रहलन सा। तब छोकरिया बोललक सुपली मौनी चाउर फटके। तब रनियन लोग गारी देलन सा कि सुपली मौनी चाउर फटके कब। तब लाइकवन बोललन सा त रानी के ईंट पत्थर बियाला। उ लोग के ई बात बड़ी करा लगल। जान गइलन सा कि ई लोग छोटकी रानी के लड़का हवन सा। तब अब जाके खटवास फटवास लेलन सा न खात हवन सा न पियत हवन सा। त अब राजा पूछता का भल कोनो चीज लेब काहे नहीं खात हव जा। हमनी नहीं चाही बोलन सा हमनी नहीं चाही। कुम्हार और कुम्हारिन लगे दूगो लड़का बा ओकर करेजा निकाल के आन देब त ओकर से नेहा के अच्छा हो जाब स। तब राजा कुम्हार कुम्हारिन लगे सिपाही के भेजलन बोललक जल्दी से लड़का लेके आए के। तब लड़का लेके अइलन स। राजा बोललक हमरा चाहे दूनो लड़का तू लोग जा जा। अब जल्लाद के बोललक जा ई लोग के लड़कवन के मार के करेजा आन के छौ गोरानी के दे देवे के। जल्लाद लोग लड़कवन के लेके गइलन स जान मारे दूर नय ले गइलन स जहाँ राजा के तखत बा सामना सामनी में जान मारे के। जमे लौकी कहाँ मार के तोपल गल बा। तब एगो बाए और एगो दाए और लड़कवन के सुतैलन स। तब दोनों के जान मार के उ लोग के करेजा लियान के देलन सा। रानी लोग उ पानी से नहैलन सा। ता राम राम कर के उठलन सा छो रानी अच्छा हो गइलन सा। ता अब हुआ जहाँ लैकवन के गारल गलबा दोनों एक एक गोफूल गइलन सा। अब हुआ जहाँ लैकवन के गारल गर रहल दोनों एक एक गोफूल हो गइलन सा। ऐसन महकता गमकता दूर ले रोज राजा आए ताके बैठी तब बहुत सुंदर फूल के गमक आवी।

सब सिपाही लोग के भेजला खोजे के कि कहां से ई फूल के गमक आवता जाके तोड़ के आने की। अब तुरे गैलन स, अब गैलन स फूल तुरे तो फूलवा अब दोनों बतियाता।

गांव के जितना आदमी बा सब के राजा बोललक, फूल आने के जे आनी आधा राजपात ओके दे देव अब। तब सब कोई गांव में के फूल लोरे जाता। तब कुम्हार और कुम्हारिन गयल।

राजा के ऐसे बुझाल कि ओकर गोर भीरी लगे अइलन सा, जैसे बुझाता कि गोदी में लेलक लैकवन के त लैकवन उड़ गइलन सा, तब चल गइलन सा। तब राजा बोले, जा सिपाही लोग कौवा हकनी के बोला के आने के। तब कौवा हकनी बोले, काहे हमके बुलावत वन सा। तो राजा बोले, बा तोहरा हाली से आवे के। तब राजा लगे गल। तो राजा ओके बोललक, तोहरा हाली से आवे के, जा फूलवा लोरे, फूलवा गमता, फूलवा लोर के ले आना। अब गल कौवा हकनी फूल लोरे।

दारे पाते अपन माँ के गोदी में समा गयलन स। तब हौजे से राजा बम्बू कनात तनैलक अपन घर महल तक ले। सभा लोगन अयलक, सब आलम जुट गल और देखलक। अब सात परात के तवा बंधाल उ लोग के माँ के छाती पर कि ओकरे लैका होवन स कि नहीं। नहीं होय त जानाई, उ होय त छतिया परे ओकर दुधवा उ तवा के पेड़ से कर के लैकवन के मुंह में जाए। तब दुधवा उ पार कर के धनाधन लैकवन पीलन स। तब राजा पतियाल की ओकरे लैका होवन स। तब कौवा हकनी अपन महल में गयल। तब राजा जल्लाद के बोलक, तब छओ रानी के बार मुंड के दही उझिल के घर में से निकाल देलक। साधु के देवल फल रहल त छओ रानी मुआ दिलन स। त कहाँ मरी साधु जानता की का होकी। जय राम जी की।

धरोहर के सरोवर कार्यक्रम सुनत हुआ जा महात्मा गांधी संस्थान और एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से तैयारी कार्यक्रम आज हमारे अरविंद और साथ साथ में हमने के सहयोगी संजू साथ देवत हुआ न भोजपुरी के ई प्रक्रिया में आज फिर से तो लोग के हमने के जो स्वर्गीय दीमराला मोहित जी के पुस्तक बाग वो शब्द कोश तैयार कर ले हुआ हीरा मोती भोजपुरी हिंदी अंग्रेजी शब्द कोश एक में से एक दुगो शब्द लुअब जा और आप जनब इस शब्द के अर्थ कौन सी है तो अ से ही शुरू कर ले जा अ तो एकर में एगो शब्द आलबा अंकलक अंकलक अंकलक यानी कलंक लगाए के दोषी ठहराए के एक्यूजेशन कब कोई बोले अंगना जात है अंगना जात है शौचालय जाना शौचालय संजू कबू कोई बोली अंग्रता अंग्रता कौन सी अर्थ निकलेगा

हमार गोर अंग्रता दुखाता, हाँ दुखाता अंग्रता तो टू मच पेन दुखाता। डॉक्टर लोग के इस शब्द चाहना बोले कि डॉक्टर नर्स लोग के कहे कि कब हम के दादा दादी लोग जानन जा कबू अस्पताल में डिस्पेंसरी में तब बोली रन जा हमार गोर अंग्रता बीता डॉक्टर बेटा जानी अंग्र तब न जानी कुछ करी नहीं तो जी नहीं जानी गोर कुछ तो कपार में लगी दवाई दे दे को कपार की तो जरूरी है ये सब जो भोजपुरी शब्द है डॉक्टर लोग के नर्स लोग के चहला जाने की अंग्रता ई सुन लो ही अंचितले में टूट स्वीत हाँ अच्छा बोल लक अंचितले में माने झट से एकाएक सडनली अंचितले में वो होता से निकल गल हाली से निकल गल अंगोरा अंगोरा यानी फायरबॉल फुटबॉल में कब बोल जाए ना कब एगो टीम एगो दूसर टीम के ऊपर पर चार पांच को गोल डालता तो बोल जा अंगोरा फेंकदबा अंगोरा फेंकदबा। अंजोर अंजोर अंजोर शब्द जनबे कहला फजीर के बोल जा अंजोर हो गल उजाला हो गल लाइट अंजोरिया अंजोरिया चांद के जो प्रकाश बा मून लाइट अंजोरिया रात वो बोले जा ऐसा रात जहां पर चांद के ऊपर प्रकाश मिलेगा अंजोरिया। अंटी अंटी यानी समाएगा विल इट एंटर एक में और दो शब्द लेव जा अंटकल अंटक गल टू ब्लॉक या फिर अटक गल बुझ सक बोले अटक गल ओकर गला में ओकर गला में मच्छी के कंटा अटक गल मच्छी के कंटा मच्छी कंटा हो कब राजा कंटा हो जुन हाउ ए जो नहीं खा जला क्रियोली में क्या बोले जाओ करा हाँ ओकर पीका मच्छी के पीका मच्छी के कंटा गला में अटक गल। फिर एगो और शब्द ले जा अनबन अनबन बा यानी दूजना में अनबन मान एक दूजना के बात नहीं मानत हो जा अन के बन अन के बन कोई के नाम हम अन के बन कब कोई इधर उधर बचियाला तो ओकर नाम डाल दिया जा अन के बन हम जानी रहे जना के ओकर नाम अन के बन अभी सुनत हुई तो ओकरा नमस्ते बोल दिला प्यार से बोलन जा ओकरा प्यार से अंड भंड कर दिलक यानी तहस नहस अनभन या फिर ई भी बोला वो अनभन बचाता अनभन बचाता अनभन माने वो कोनो मतलब नहीं नॉनसेंस बचाता अनभन बचाता। ई शब्द सुने अंदर अंदर बोले जा घर के अंदर बाऊ तो आरो को अर्थ अंदर दूसर का अर्थ जाने ला अंदर एगो अंदर तह जिसे घर के अंदर बा हाँ जी बाहर के उकर उका विलोम है अंदर त और भोजपुरी में उगो अर्थ अंदर के अंदर महकता जब कोनो चीज सर जला तो कैसे महकेला अंदर अंदर महकेला अंदर हाँ दुर्गंध बैड स्मेल अवे और अंतराल अंतराल यानी मध्यांतर इंटरवल कोई बेला वो अंटी करता अंटी यानी जानबूझ के कुछ करता अंधरा अंधरा हाँ अंधरा एगो जो न जो कि नहीं रोकेला अंधार तो जन्म कहला अंधार जब रात के अंधकार होला तो अंधार अंधुआ अंधुआ हरबरी में होला हरबरी में होना टेक क्विकली अंधेरिया अंधेरिया अंधेरिया अंधेरिया दुगो अर्थ व्यर्थ विदाउट रीजन या फिर अंधेरिया रात ऐसे

अकज बकज, अकज बकज एकरा दुगो अर्थ में कब्जा ले। जे कोई बोली अकज बकज नहीं खाइए, जो चीज आई खाइते नहीं जाइए, इधर उधर की चीजें अकज बकज। या फिर भी कब्जा बोले अकज बकज बचाता, तो वही नहीं था कुछ बचाता, अकज बकज बचाता। अगबका गई ले, अगबका गई ले, यानी नहीं जाना था कुछ हो नहीं आशा करता हल कि ओकर संगे ई हो तो अगबका गल तनिको नहीं जानता कुछ करी। और वह अकेले डुकेले, अकेले डुकेले, अकेले डुकेले माने अपने अखा अखा अखा मॉरिशस जाने लंजा कि धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के तैयार करे में हमने के संजू भाई सहायता देवे लंजा। अखा होल अखियान, अखियान निरखना टू एडमायर। अगरम बगरम, अगरम बगरम है हम सुन ले हैं चाचा लोग के दादा लोग के शब्द के प्रयोग करे। अगरम बगरम तरह तरह के, अगरम बगरम के खाए के हो जा रखल बा, अगरम बगरम के अगरम बगरम के बुला ले बा। भला चौथारी में बोले बोले रहा बीस बीस जना आई तो ऊ एक बीस आदमी आन दिलक अगरम बगरम के लेके चला। अंग्राता, अंग्राता, अंग्रता, अंग्रता यानी बहुत दुलार से बिगाड़ना। अंग्राता अगम जानी, इधर कोई है अगम जानी फोटेल जो नागे से बोले बोलन जा हई होई हव होई अगम जानी। अगाड़ी, अगाड़ी आगे आगे। अग्याल बा, उत अग्याल बा आग उगलता। अग्याल बा माने टू बी एंग्री क्रोधित होना। अगोरे की, अगोरे देखे के साथ बैठना। अटक गल, अटक गए ये बोलनी सा नहीं अटक गए। अट अट करता, अट अट अट अट ये बहुत प्रयोग हो भाई जब भला कुछ नहीं जान कुछ कर बता। अट अट अट अट नहीं कर, सीधे काम काम पे आओ। वो कर संगे अट अट नहीं कर लग। फिर अदब से यानी इज्जत से, अदब से। अधीन में, अधीन में यानी वश में, उकर अधीन में चलालबा। वो छोकरा वो छोकरी के अधीन में चलालबा, अंडर वन्स थंब। अन के कन बना देलक, अन के कन बना देलक यानी उकरा बिगाड़ देलक। तेकरे संगे धरोहर के सरोवर कार्यक्रम के हेजा परी पूरा करब जा। सब कोई के धन्यवाद देव जा जितना कोई हम के कार्यक्रम सुनला जा और सीखला जा बहुत कुछ। हमने के सहयोगी संजू के धन्यवाद। फिर मिलब जाए गो नवा कार्यक्रम लेके धरोहर के सरोवर। तबले भोजपुरी बोलते रहिया, भोजपुरी सीखते रहिया। RM3 रेडियो।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस आज की चर्चा।
1: रेडियो मॉरिशस पर आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का और MBC 3 पर हमारे सभी दर्शकों का, साथ ही साथ फेसबुक पेज फॉलोअर्स का, आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज के इस कार्यक्रम को लेकर। जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं, आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस एक घंटे के सफ़र में जुड़ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बुधवार का दिन है, 13 तारीख, मई महीना, और मौसम के परिवर्तन के साथ कार्यक्रमों में भी बहुत सारे अच्छे परिवर्तन आते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं जहां पर हम स्वास्थ्य संबंधित बात तो ज़रूर करते हैं, पर साथ ही साथ आज हम बात करेंगे नर्सेज के बारे में, क्योंकि मनाया जा रहा है वर्ल्ड नर्सेज डे, यानी विश्व नर्स दिवस, जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। और नर्सेज का कार्य कितना कठिन होता है, कितना चुनौती भरा होता है, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। और आज के इस कार्यक्रम के साथ हमारी अतिथि हैं श्रीमती कविता बोगरिक जी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की नर्सिंग ऑफ सुपरवाइज़र हैं। जी हाँ, नर्सिंग सुपरवाइज़र हैं और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते कविता जी।
2: नमस्ते रत्ना जी,
1: और आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे विश्व नर्स दिवस के अवसर पर, तो आज हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि विश्व नर्स दिवस क्यों मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या है।
2: जी हाँ रत्ना जी, हम विश्व नर्स दिवस हर वर्ष 12 मई को मनाती है, क्योंकि इस दिन मॉडर्न नर्सिंग की जननी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर, के उपलक्ष पर हम ये दिवस मनाती है। हम नर्सेस इस दिन को बहुत बहुत मीनिंगफुल मानते हैं, क्योंकि हमें इस दिन के समर्पण, हमें अपने करुणा सेवा और स्वास्थ्य सेवा के अमूल्य योगदान की सम्मान देना होता है।
1: बिल्कुल।
2: और मैं यहाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारियाँ देना चाहती हूँ, क्योंकि वे सेवा के

0: सबसे फाउंडेशन के लिए उसने बहुत कुछ किया है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में. आप जानते होंगे कि वर्ल्ड वॉर टू में 1874 में जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था तो ज़्यादातर बहुत सोल्जर्स घायल हुए थे. तो सेवा भाव के साथ वो उन्हें अपने सेवा प्रदान कर रहे थे. तो वे उन्हें उन्हें और लेडीज़ के लिए नर्सेस लेडीज़ के लिए उन्हें लेडीज़ लैब के सेक्रेटरी में ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित हुए थे. तो वो क्या करती थी उस दिन जब सोल्जर्स ट्रीटमेंट के बाद सोने लगते थे तो वे बहुत साइलेंस से अपने लैंप लेकर उन सोल्जर्स को जाकर ऑब्जर्व करती थी. तो उसने बहुत कुछ किया है हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में. जैसे कि वो इवॉल्व हुए थे एक ऑक्यूपेशन से और उसने बहुत जोर डाली है कि ये ऑक्यूपेशन एक प्रोफेशन में बदल जाए. और इसके लिए उन्होंने नर्सिंग काउंसिल को और रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसिल के दौरान उसने ट्रेनिंग पर बहुत जोर डाली नर्सेज के ट्रेनिंग में. और जब नर्स ट्रेन हो जाते हैं जैसे कि मॉरिशस में हम 3 इयर्स ट्रेनिंग करते हैं तो उस समय ट्रेनिंग दिया जाता था डिप्लोमा USA में नर्सिंग के लिए. तो क्या हुआ था ट्रेनिंग के बाद उन्हें रजिस्ट्रेशन मिला नर्सिंग काउंसिल के दौरान. और जब एक ऑक्यूपेशन एक प्रोफेशन में बदलते हैं तो उनके साथ अकादमिक क्वालिफिकेशन यानी कि ट्रेनिंग होता है.
1: बिल्कुल.
0: रजिस्ट्रेशन होता है नर्सिंग काउंसिल में और उनको एक सैलरी भी देती है.
1: तो देखा जाए तो नर्स अपने आप में एक बहुत ही बड़ा योगदान है मेडिकल साइंस को, क्योंकि मैं समझती हूँ एक डॉक्टर अकेले वो काम नहीं कर पाते, इसीलिए उनको एक सहयोग मिलना बहुत ही जरूरी है.
0: और मैं आगे कहूँगी कि नर्सेस जो है वे नर्सिंग केयर में पेशेंट केयर में कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करती है. वे डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करके हेल्थ एजुकेशन पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी केयर प्रोवाइड करती है. और जैसे आपने अभी कहा है कि इस साल की टीम है, आप जानते हैं हर साल नर्सेस डे पर एक अलग से टीम रखा जाता है WHO के दौरान. तो क्या हुआ ये इस साल का थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्सेस सेव लाइव्स. सो इस टीम का इस बात पर जोर देता है कि अगर नर्सेस को सही ट्रेनिंग सपोर्ट और एक सुरक्षित वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाए तो वे ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सकते हैं.
1: बिल्कुल.
0: और एक हेल्थ केयर सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत कर सकती है.
1: बिल्कुल, जैसे आप बता रही हैं कि एम्पावर करना है नर्सेज को. और जिस तरह से लोगों की जान बचाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि रात भर यानी ड्यूटीज़ उनकी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, हमें ऐसा लगता है कि भाई 12 घंटे की 8 घंटे की जो शिफ्ट होती है उसमें आपको काम करना है, लेकिन नर्सेज की जो ड्यूटी है वो केवल वहाँ जाके पेशेंट्स की देखभाल नहीं करना, उनके साथ साथ उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं जो उन्हें याद रखनी है, जो उन्हें ठीक तरह से निभानी है. और ऐसे माहौल में नर्सेज को भी वो सम्मान मिलना बहुत आवश्यक है और इसीलिए विश्व नर्सेज दिवस मनाया जाता है. और मैं ज़रूर पूछना चाहूंगी कविता जी से कि कविता जी स्वास्थ्य की को जैसे स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है नर्सेस को, यानी बैकबोन ऑफ द हेल्थ सिस्टम, तो ऐसा क्यों कहा जाता है?
0: रत्ना जी, हम नर्सेज को हेल्थ केयर सिस्टम के बैकबोन में से भी जाना जाता है, इसलिए क्योंकि हम

0: नर्सेस 24/7 नर्स पेशेंट्स के साथ होती है.
1: बिल्कुल.
0: और हम कंटिन्यूस नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं
1: जी.
0: और इसके साथ हम डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंटेशन देते हैं. हम इंश्योर करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पेशेंट सेफ्टी. और हमें हेल्थ केयर सिस्टम के सबसे मजबूत सपोर्ट बताया जाता है, इसलिए कि हम जब 24/7 काम करते हैं तो हम दिन रात पेशेंट्स की सेवा में लगे रहती है. और इसके साथ साथ हम केयर कोऑर्डिनेशन करते हैं. हम डे टू डे हॉस्पिटल के फंक्शनिंग में काम में करते हैं, क्योंकि हमें ये एक सिर्फ एक जॉब नहीं होती है.
1: सही
0: है. हम इसके साथ साथ कंपैशनेट केयर भी प्रोवाइड करते हैं, और पेशेंट के फिजिकल नीड के साथ साथ हम उनके इमोशनल नीड्स को भी
1: पूरा करते हैं. बिल्कुल. और मैं समझती हूँ ये एक बहुत बड़ा, क्योंकि आप सोचिए परिवार से जब दूर रहते हैं तो हमें एक कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी उतनी ही ज़्यादा ठीक तरीके से देखभाल करे, संभाल दे, और साथ ही साथ इमोशनली हमको एम्पावर कर सके, साथ ही साथ हमारे शारीरिक रूप से हम जिस तकलीफ़ से जूझ रहे हैं उसके लिए आप हमें पूरी तरह से हेल्प करें, सहयोग दें. और जैसे नर्सेस का काम होता है कि सभी पेशेंट्स को सही समय पर सही जैसे उनकी देखभाल करना, उनको ठीक तरह से दवाइयाँ देना, उनकी सारी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी करना. और जैसे हम कहते हैं कि लगभग देखा जाए तो नर्सेस का काम डॉक्टर से ऑलमोस्ट पैरेलल होता है, पर ये जानना भी ज़रूरी है कि डॉक्टर की भूमिका और नर्स की भूमिका में अंतर क्या होता है.
0: जी हाँ रत्ना जी, हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स और नर्सेस एक बड़े इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है.
1: ट्रू.
0: हम नर्सेस डॉक्टर्स की कोलैबोरेशन करते हैं और केयर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, लेकिन दोनों के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती है. जैसे डॉक्टर्स वो डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट प्लान बनाती है, और ट्रीटमेंट प्लान के बाद वे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, और डिस्चार्ज प्लानिंग भी करते हैं. और जहाँ तक नर्सेस के रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे मैंने अभी कहा है, हम पेशेंट को कंटिन्यूस केयर मॉनिटरिंग करते हैं 24/7 रात दिन. और इसके अलावा हम डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. हम सेफ्टी जैसे वो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट होती है टू एंश्योर पेशेंट सेफ्टी, हम इस पर ज़्यादा जोर डालते हैं. और ये प्रायोरिटी है कि हम हेल्थ एजुकेशन भी करते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल भी करते हैं जिससे कि ज़्यादा रिकवरी होते हैं. और हम हेल्थ एजुकेशन पेशेंट्स को देते हैं, और हम फैमिली थेरापी भी करते हैं, जैसे जिससे कि जब पेशेंट को डिस्चार्ज होता है तो कंटिन्यूटी ऑफ केयर, जैसे वो रिलेटिव्स उनके सपोर्ट में रहते हैं, चाहे वो घर में.
1: बिल्कुल, क्योंकि मैं समझती हूँ खाली जो पेशेंट है उनके तक सीमित नहीं होता, उसके साथ ओवरऑल आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि नर्सेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है.
0: नर्सेस के सबसे बड़ी चुनौती में है कि हमें पेशेंट केयर सेफली, टाइमली और इफ़ेक्टिवली प्रदान करना है. इसके अलावा चुनौती ये भी होती है कि हमें बहुत एक, आप जानते हैं ये नर्सिंग प्रोफेशन जो है, इस वर्किंग एनवायरनमेंट में ज़्यादातर बहुत प्रेशर होता है.
1: बिल्कुल.
0: जैसे कि वर्कलोड बहुत होता है और स्टाफ शॉर्टेज जो होता है उससे प्रेशर बहुत
1: बढ़ जाता है.
0: तो हमें ये सब मैनेज करना पड़ता है.

0: चुनौती के एग्जांपल में
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और हमें इमोशनल नीड जैसे एम्पैथी और पूरे ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये चुनौती होती है कि अगर हम इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में और स्टाफ शॉर्टेज इंक्रीज वर्कलोड के साथ क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा ये भी चुनौती होता है कि हमें पेशेंट्स और रिलेटिव्स को भी मैनेज करना पड़ता है। और कई कई बार तो ये भी हुआ है कि वर्कप्लेस वायोलेंस जैसे होता है कभी कभी, हर हॉस्पिटल में होता है, तो हमें ये सब मैनेज करके इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा और भी चुनौती होते हैं, इनके रिजल्ट्स जैसे कि स्टाफ शॉर्टेज होता है, ये इंक्रीज वर्कलोड होता है, तो हमारे नर्स पेशेंट के रेशियो बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो हम टाइमली सर्विस प्रदान नहीं कर पाती है,
1: जैसे वो एक तरह का तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। और ऐसे स्ट्रेस में आपको सब कुछ मैनेज करना है
0: और क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो क्या होता है रत्ना जी, हम नर्सेज में ये कूट कूट कर भरा हुआ है कि हमें क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना
1: आपको
0: है,
1: तैयार किया गया
0: है, हमको ट्रेन किया गया
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल।
0: इन वर्षों में
1: सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए,
0: और हमें इस प्रोफेशन में माउंट किया गया है कि हमें क्वालिटी केयर देना ही है
1: बिल्कुल,
0: चाहे वो शॉर्टेज स्टाफ के एनवायरनमेंट में है, चाहे वर्कलोड बढ़ गया है, हमें तो क्वालिटी केयर देना ही पड़ता है, बिकॉज वी कांट कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी।
1: सही बात है। और जैसे जहां पर आपको पेशेंट्स के साथ डील करना है, हर किस्म की बीमारियों के साथ डील करना है, हर किस्म की इमोशंस के साथ डील करना है,
0: और मैं यहाँ एक चुनौती के एग्जाम्पल मैं ज़्यादा बात करना चाहती हूँ कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हम सिर्फ केयर नहीं देते हैं, ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसके साथ साथ हम मानसिक सपोर्ट भी करते हैं,
1: मोरल सपोर्ट देना,
0: मानसिक
1: मोरल
0: इमोशनल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को ज़्यादातर अधिक लाभदायक बनाते हैं, जिसमें पेशेंट्स की रिकवरी ज़्यादा होती है, उन्हें लेंथी टाइम में रिकवर नहीं करना पड़ती है। तो हम इन चुनौतियों के बावजूद हम क्वालिटी केयर पर ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं।
1: जब आप शॉर्टेज की बात कर रही हैं तो मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, क्या मॉरिशस में नर्सेज की जो मात्रा है वो संतोषजनक है, और अगर नर्सेज की मात्रा इनफ नहीं होती तो स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा पर जैसे उसका कैसा प्रभाव पड़ता है?
0: मैं तो यही कहूँगी कि हमारे मॉरिशस हेल्थ केयर सिस्टम में नर्सेज की मात्रा उतनी संतोषजनक नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट्स से पता चलता है कि ज़्यादातर हर हॉस्पिटल में, स्पेशली स्पेशलाइज हॉस्पिटल में और मेंटल हेल्थ केयर सेटिंग्स में ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलता है। और जैसे आपने पूछा है, हाँ, हमारे शॉर्टेज के बावजूद हम हेल्थ केयर प्रोविजन 24/7 करते हैं, रात दिन करते हैं, इसी इंक्रीज वर्कलोड के साथ हम ये मैनेज कर पाते हैं कि हमें क्वालिटी केयर देना चाहिए। और अगर इसके प्रभाव ज़्यादातर नर्सेज के काम में इंटरफियर करती है, तो हमारे पास सपोर्टिव स्टाफ भी है जो हमको असिस्ट करते हैं कि हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकें।
1: तो कभी ऐसा भी होता है कि जब नर्सेज की शॉर्टेज हो जाती है तो आप लोगों को ओवर टाइम करना पड़ता है?
0: ज़्यादातर हमें ओवर टाइम करना पड़ता है, लेकिन अगर हम ओवर टाइम के बारे में देखते हैं तो क्या होता है, नर्सेज डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ

0: कि हम पेशेंट्स को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हैं, हमें केयर देना है, क्वालिटी वाइज देना है, तो नर्सेस की मांग बहुत ज्यादा होती है. ये विश्व भर में
1: बिल्कुल
0: मैंने कुछ रिसर्च किया है कि वर्ल्ड वाइज 6 मिलियन नर्स की कमी होती है.
1: बिल्कुल, जैसे
0: और हम हर साल इसका लगातार मांग होती हुई है कि हमें नर्सेस को रिक्रूटमेंट करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, लेकिन ये ट्रेनिंग
1: बावजूद भी उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता,
0: क्योंकि ये ट्रेनिंग ही 3 इयर्स
1: बिल्कुल
0: 3 इयर्स में कंप्लीट
1: होता है
0: तो ये कहने का मतलब है कि मैं कहना चाहती हूँ हम नर्सेस को स्टाफ शॉर्टेज और वर्क इंक्रीज वर्कलोड को ना देखते हुए हमें मजबूत रहना चाहिए कि हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. और यह इस कमी के वजह से हमें ज़्यादातर जोर डालना चाहिए ट्रेनिंग पर, रिक्रूटमेंट पर और नर्सेस रिटेंशन पर.
1: और मैं कविता जी आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे डॉक्टर्स को ओथ दिया जाता है, ओथ लेने के लिए उनको उनके मेडिकल जब ट्रेनिंग फिनिश हो जाती है तो उनको ओथ लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो क्या नर्सेस में भी ऐसा होता है कि उनको भी ओथ लेना पड़ता है?
0: हम नर्सेस को ओथ नहीं लेना पड़ता है, लेकिन मैं यहाँ बहुत डिटेल से आपको जानकारी और पब्लिक को जानकारी देना चाहती हूँ कि हमारी ट्रेनिंग 3 इयर्स होती है. और इस 3 इयर्स में मानिए कि मैं एग्जांपल देती हूँ, जब हम नर्सिंग प्रोफेशन में दाखिल होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, तो हम नर्सिंग स्टूडेंट्स के रूप में ज्वाइन करती है. और जैसे कि मैं 19 साल में मैं नर्सिंग स्टूडेंट से ज्वाइन कर से ज्वाइन हुई थी, तो इस 3 इयर्स में हमें इस प्रोफेशन के प्रोफेशनल वैल्यूज में मोल्ड करती है. मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि अगर हमारे बच्चे होते हैं 19-20 साल में कॉलेज जब छोड़कर इस प्रोफेशन में दाखिल होती है, तो हमारे ओरिएंटेशन एक कॉलेज स्टूडेंट के जैसे होते हैं.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: तो हमें इस प्रोफेशन में क्या एक्सपेक्टेशन होता है, हम प्रोफेशनल वैल्यूज को रिप्लेस करती है, केयरिंग वैल्यूज को इस स्टूडेंट में कूट कूट कर भरती है.
1: बिल्कुल,
0: क्या कि वो ताकि वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन सके 3 इयर्स के बाद.
1: बिल्कुल सही.
0: तो ये हम नर्सेस में मैं सोचती हूँ कि विश्व भर के नर्सेस में ये गुण होती है कि हमें एक प्रोफेशनल कैसे
1: तैयार होना है.
0: हमारी प्रोफेशनल इमेज कैसे दिखना चाहिए,
1: बिल्कुल.
0: हमारे प्रोफेशनल वैल्यूज हम पर रिफ्लेक्ट करने चाहिए इस सेवा भाव में. अगर हमारे अंदर सेवा भाव नहीं होती है तो हम केयरिंग प्रोफेशन में
1: कभी नहीं काम कर सकते.
0: क्योंकि हम ह्यूमन लाइव्स
1: को हैंडल करते हैं.
0: ये ना एक पीस ऑफ पेपर नहीं है कि गलती हो गई तो हम इसे फेंक देते हैं.
1: नहीं, बिल्कुल.
0: क्योंकि
1: ये बहुत सेंसिटिव है.
0: ये वेरी वेरी सेंसिटिव है. तो हम 3 इयर्स लगा लेते हैं कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को कैसे प्रोफेशनल वैल्यूज देते हैं, और इसके साथ साथ अकादमिक क्वालिफिकेशन, नॉलेज, स्किल्स और एक्सपर्टीज देते हैं इन 3 इयर्स में, ताकि वो एक अच्छा प्रोफेशनल बन सके.
1: बिल्कुल. और जैसे हम डॉक्टर्स की बात करते हैं, तो डॉक्टर्स का प्रोफेशन जितना चैलेंजिंग होता है, उनसे भी कई ज़्यादा मैं समझती हूँ नर्सेज का प्रोफेशन भी उतना ही चैलेंजिंग, क्योंकि साथ ही साथ उनको डॉक्टर्स के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस पर काम करना होता है. इंस्ट्रक्शंस में कोई चूक नहीं होनी चाहिए. और जैसे कविता जी बता रही हैं कि हम इंसान की ज़िंदगी के साथ काम करते हैं, जहाँ पर छोटी भी गलती हुई तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है. और नर्सेस की ज़िंदगी, नर्सेस का काम हमारी सेवा संस्थाओं में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है. और आज का दिन वर्ल्ड नर्सेस डे समर्पित है विश्व की सभी नर्सेस को, क्योंकि आज के दिन को हम याद करते हैं उन महान आत्मा को जिन्होंने इस

प्रोफेशन को बनाया है एक बहुत अहम प्रोफेशन, जहाँ पर अपने सेवा भाव को लेकर आप लोगों की सेवा करते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करते हैं। चलिए लेते हैं एक गीत का ब्रेक, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में वर्ल्ड नर्सेस डे पर और चर्चा जारी रखेंगे।

की चर्चा का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, और हम आपको याद दिलाते चले इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा दोपहर के 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। इस वक्त हमारे साथ जितने भी श्रोता जितने भी दर्शक जुड़े हैं हम ज़रूर आपको बताना चाहेंगे। इस वक्त हमारी टेक्निकल टीम पर हमारे साथ है फिजान जी, और हमारे साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट है उरूसा, साथ ही साथ हमारी प्रोड्यूसर शीतल जी जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचा रही हैं। और इसी के साथ जी

0: आज हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती कविता बोगरीत जी, जो कि नर्सिंग सुपरवाइजर है स्वास्थ्य मंत्रालय से यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि नर्सेज के लिए, नर्सेज की ड्यूटी में कौन कौन से काम शामिल होते हैं। हम ज़रूर जानना चाहेंगे कविता जी से।
1: जी हाँ रत्ना जी, नर्सेज की ड्यूटीज़ कॉम्प्रिहेंसिव होती है। बहुत सारे रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, फंक्शंस होती हैं। मुख्य तौर पर हम पेशेंट्स को बेसिक नर्सिंग केयर देती है। बेसिक नर्सिंग केयर यानी कि हम हेड टू टू होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती है, और उसके साथ साथ हम कंफर्ट भी देती है। और नेक्स्ट ड्यूटी होती है, हम वाइटल साइंस को लेते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, पल्स, रेस्पिरेशन मॉनिटरिंग करते हैं, और हम डॉक्टर्स के इम्प्लीमेंट के केयर प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिकेशन होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ब्लड कलेक्शन होते हैं, इन सब को केयर कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं। और हम एक स्वच्छ एनवायरनमेंट को भी प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्रॉस इन्फेक्शन प्रिवेंट किया जाए। तो जैसे कि बेड स्पेसिंग होती है, और हम इन्फेक्शन कंट्रोल पर ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाए। और इसके अलावा हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और हम फैमिली थेरापी काउंसलिंग भी करते हैं, और इमोशनल नीड्स के जैसे कि मेंटल हॉस्पिटल में साइकोथेरापी भी करते हैं, फैमिली थेरापी भी करते हैं, और हम केयर कोऑर्डिनेशन करके मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के साथ कोलैबोरेशन करके हम होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं।
0: और कविता जी, आपके प्रोफेशन में सेवा भाव कि क्या अहमियत है, क्योंकि आप जब से बोल रही हैं कि सेवा होना चाहिए, वो अगर फीलिंग नहीं है, आप पैशनेट नहीं है इस प्रोफेशन को लेकर, तो आगे चलकर आपको मुश्किलें खड़ी हो सकती है, आपको भी और होने वाले जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए भी। तो आपके प्रोफेशन में सेवा भाव क्यों आवश्यक है?
1: रत्ना जी, मैं कहूँगी कि जैसे मैं कह चुकी हूँ कि नर्सिंग सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक प्रोफेशन होती है जो पेशेंट केयर और कंफर्ट पर बेस्ड होती है, जिसे हम सब मिलजुल के हम कंपैशनेट केयर बोलते हैं। ये कंपैशनेट केयर क्या होता है? इसकी फाउंडेशन सेवा भाव से होती है। अगर हम में ये केयरिंग फीलिंग नहीं होती है, तो हम पेशेंट को फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स प्रदान नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहूँगी कि सेवा भाव ही नर्सिंग की फाउंडेशन होती है। अगर सेवा भाव नहीं होती है, तो हम पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट दे पाती है, लेकिन केयर और सपोर्ट नहीं दे पाती।
0: बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि होलिस्टिक अप्रोच होता है आपका, तो होलिस्टिक अप्रोच के लिए वो भाव होना बहुत आवश्यक है। ये केवल एक पेशा नहीं है, ये केवल एक काम नहीं है, एक कंपैशनेट प्रोफेशन है, जहाँ पर आपको इमोशनली भी उसका बहुत ध्यान रखना है। पर बहुत सारे लोग समाज में ये सोचते हैं कि नर्स केवल इंजेक्शन लगाती है, तो मैं पूछना चाहूँगी कविता जी, इस सोच पर आप क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं कहूँगी रत्ना जी कि ये सोच बिल्कुल गलत और इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम नर्सेज, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि हम नर्सेज पेशेंट के केयर में कंटिन्यूसली 24/7 दिन रात काम करती है, उनको सेवा देती है। और ये सिर्फ इंजेक्शन लगाना नहीं होती है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि हम ट्रीटमेंट केयर प्लान इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और ट्रीटमेंट केयर प्लान में क्या होता है कि हमें बेसिक केयर नर्सिंग प्रदान करना होता है, हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है जो डॉक्टर्स के द्वारा हमें दिया जाता है, और हमें सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और

0: इसके अलावा मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि कंपैशनेट केयर में आती है कि मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि इस सब कार्य के बाद जैसे कि क्या होता है, हमें ये एम्पैसी से लेकर जानना चाहिए कि जब एक रिलेटिव्स अपने चाहे वो बच्चा होता है चाहे वो बुजुर्ग होते हैं अपनी क्लोज रिलेटिव को हॉस्पिटल में एडमिट करती है तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होता है।
1: बिल्कुल,
0: वो उन्हें इस मरीज को इसकी दर्द, उनके तकलीफ, उनके डिस्कम्फर्ट को ध्यान में रखते हुए हम फिजिकल और इमोशनल नीड्स प्रदान करते हैं, और इसके अलावा हमें रिएश्योरेंस रिलेटिव्स को भी देना चाहिए क्योंकि वे एक तरह की होपलेसनेस और हेल्पलेसनेस फील करके वो देखते हैं कि हम केयर नहीं कर पा रहे हैं तो हम हॉस्पिटल के द्वारे उनके क्लोज रिलेटिव्स को केयर प्रदान करना चाहिए।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक मानसिक तनाव बना हुआ है, एक मानसिक लड़ाई के साथ वो जूझ रहे हैं।
0: तो हमें ये सोचना चाहिए हम नर्सेस को, वे कर नहीं पा रहे हैं तो कितने ट्रस्ट के साथ वे अपनी क्लोज संबंधियों को हमारे
1: भरोसे
0: छोड़ते हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी होता है कि हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं भाव के साथ, हमें उनको केयर देना चाहिए। और जैसे आप बोल रहे थे कि सिर्फ इंजेक्शन लगाना रहा, मैं एग्जांपल देना चाहती हूँ कि अब डॉक्टर्स ने तो ट्रीटमेंट प्लान लिख कर दे दिया हम पर, हमको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि वो तुम्हारे आप नर्सेस के निगरानी में रहेंगे, हमें कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन करना होता है। तो हमें कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन कैसे करना चाहिए, एबनॉर्मलिटी को कैसे आइडेंटिफाई करके हम अगर पेशेंट के स्वास्थ्य में कुछ डिटेरियोरेशन देख रहे हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर्स को
1: इन्फॉर्म
0: करना होता है कि पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट हो रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द पेशेंट को केयर देकर उसकी जान बचाना सकते। तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो होते हैं ये हम पर निर्भर होते हैं, वो डॉक्टर पर नहीं होते हैं।
1: यानी तो आपको कंप्लीट केयर उस टाइम पर आपकी जिम्मेदारी होती है, जो भी चेंजेस आते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव तो आपको उनको इन्फॉर्म्ड रखना,
0: ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर हम प्रोफेशनल कॉन्शियंस लेके अपने काम पर नहीं जाते हैं तो हम अपने बेस्ट कैपेबिलिटीज पर काम नहीं कर सकते।
1: कविता जी, मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी, जैसे आपकी शिफ्ट चेंजेस होती हैं, मतलब आपके बाद आप मान लीजिए एक मरीज की देखभाल कर रहे हैं जो जिनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, और मान लीजिए आपकी जैसे ही ड्यूटी शिफ्ट होती है और जो नर्स आ रही हैं उनको उनकी कंडीशन के बारे में नहीं पता होता, तो क्या आपको उनको भी ब्रीफ करना होता है उनकी कंडीशंस के बारे में?
0: जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हम, क्योंकि हमें टेकिंग ओवर और हैंडिंग ओवर चार्ज करना पड़ता है। इसके लिए हमें 15 मिनट्स दिया जाता है जिससे कि हम जो नर्सेस आ रहे हैं या जा रहे हैं हैंडिंग ओवर के दौरान या टेकिंग ओवर चार्ज के दौरान, हमें हर एक मरीज को विस्तार से उनको उनके ऑब्जर्वेशन के उनके कंडीशन में सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ केयर मेंटेन करना पड़ता है। और इस बात पर लेकर मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर लोग सोचते हैं कि नर्सेस सिर्फ इंजेक्शन देते हैं तो और फिजिकल केयर के अलावा इमोशनल नीड्स भी प्रदान करते हैं, इमोशनल सपोर्ट और रिएश्योरेंस भी प्रदान करते हैं। और मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रोफेशन में, जैसे कि मुझे लगभग 40 साल होने को है इस प्रोफेशन

0: में, तो आप जानती है कि वो कितना इमोशनल टैक्सिंग मोमेंट होती है जब हम डाइंग पेशेंट के केयर में होती है.
1: बिल्कुल.
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस मोमेंट में, चाहे वो 1 आवर होती है,
1: कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए,
0: कुछ सेकंड्स के लिए, कौन उसके पास होती है
1: सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, एक ऐसी मोमेंट जहां पर आप एक ऐसे हेल्पलेस सिचुएशन से निकल रहे हैं, जहां आप उनको बचाना चाह रहे हैं पर बचा नहीं पाते हैं,
0: बचा नहीं पाते हैं क्योंकि
1: उनकी क्रिटिकल कंडीशन,
0: उनके क्रिटिकल, इस जब जब जब ये डाइंग मोमेंट्स होते हैं, डाइंग पेशेंट्स होते हैं, तो हम नर्सेस की ये ड्यूटी होती है, हमारे ड्यूटी ड्यूटी ऑफ केयर जिसे कहते हैं, हम उनके साथ होते हैं. उनके पास ज़्यादातर रिलेटिव्स नहीं होते हैं,
1: बिल्कुल,
0: उनके संबंधियों नहीं होते हैं, तो हम नर्सेस होते हैं, तो हम नर्सेस उनके साथ अबदन नहीं करती है, उनके पास रहती है, उनको सुनती है, चाहे वो बोल नहीं पाते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, उन टच टेक्निक करके, उनके हार्ट होल्ड हर करके, उनके उनके अंतिम क्षण तक हम उनके साथ होते हैं. तो ये डाइंग केयर जो होती है, ये सिर्फ नर्सेस कर प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हम उनके साथ 24/7 दिन रात होते हैं.
1: इमोशनली आप उनके साथ, जैसे उनको आप देख रहे हैं, हाँ, एक साथ फिजिकली आप उनको वो केयर भी दे रहे हैं, हाँ, और मेंटली आप उनको जैसे एक तरह से सांत्वना दे रहे हैं, उनको रिलैक्स कर रहे हैं, उनको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं, जहाँ पर एक तरह फैमिली साथ नहीं है पर
0: हम उनके साथ होते हैं. हम क्योंकि हमें ये हमें ये बताते हैं या ये ट्रेनिंग देते हैं कि हमें चाहे कुछ भी हो, हम पेशेंट को अबंडन नहीं करते हैं उनके अंतिम क्षण तक
1: आप उनका साथ दे रहे हैं. तो कविता जी, मैं पूछना चाहूँगी, क्या कई बार ऐसा भी होता है कि हमने देखा है हॉस्पिटल्स में नर्सेज के साथ कई बार बहुत ज़्यादा बदसलूकी होती है, बहुत सारे तरीके से बात, बहुत बुरी तरीके से बात की जाती है, बहुत, तो क्या ये आसान होता है सिचुएशंस को हैंडल करना? क्योंकि कई बार होता है कि आपके सामने कोई छोटा सा बच्चा है, या कई बार ऐसा होता है कि एक वृद्ध व्यक्ति है, और हर इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है, मानसिक जो वो कैपेबिलिटी होती है, वो सेम नहीं होती है. तो क्या आसान होता है नर्सेस को इन सभी सिचुएशंस के साथ डील करना?
0: जी हाँ, हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज है, जिस स्किल्स है, जिससे हम इन सिचुएशंस को मैनेज कर पाती है. जैसे कि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल्स होते हैं कि वो इंटरपर्सनल स्किल्स करते हैं, कि कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, कि हर सिचुएशन में हम जानते हैं, हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होते कि हमारे एनवायरनमेंट बहुत तनाव में गुजरता है, हर दिन एक चैलेंज होता है.
1: सही बात.
0: हर दिन एक चैलेंज होते है, इमरजेंसी सिचुएशन होते हैं, पब्लिक को मैनेज करना पड़ते हैं, रिलेटिव्स को मैनेज करना पड़ते हैं, तो हमें ये, हम साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होते हैं कि कैसे इस सिचुएशन को मैनेज करते हैं. अगर हम हमें ट्रेनिंग दिया जाता है कि हमें एक काल्म एटीट्यूड अडॉप्ट करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव होनी चाहिए, हमें चाहे जिस स्थिति भी हो सकता है, कि जैसे कि रिलेटिव्स नाराज हो रहे हैं, कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो हमें काल्म एटीट्यूड अडॉप्ट करके हमें लिसन करना चाहिए, हमें पेशेंस रखना चाहिए, उनको वो जानकारी देना कि हम है यहाँ पर, उनके प्रॉब्लम्स को लिसन करके, और हम कुछ करेंगे,
1: उनको ये आश्वासन
0: देते हैं कि हम कुछ करेंगे कि उसके सिचुएशन को और ज्यादा
1: कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल्स में तनाव वाली सिचुएशन खड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, आपातकालीन स्थिति के सिचुएशन आ जाती है, तो उन ऐसी सिचुएशंस को आप कैसे हैंडल करती हैं?
0: यह हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें पैनिक नहीं होना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में, हमें काल्म रहना चाहिए, हमें हमारी टीम को असेंबल करना है, हमें प्रिपेयर होना है हमारी टीम को कैसे हर सिचुएशन, हर इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसे हम क्या कोऑर्डिनेशन करते हैं, और मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को भी अलर्ट होना है कि हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ हम अपने टीम को, जैसे वो एक लीडर होता है हर टीम में इमरजेंसी सिचुएशन करने के, उस लीडर पर सब निर्भर होता है, उसे कॉलमली इफेक्टिवली और टाइमली केयर देना पड़ता है अगर इंसान को की जान को बचाना पड़ता है। तो इसके साथ साथ स्किल्स होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स होता है, कोऑर्डिनेशन स्किल्स होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होता है, और इसके अलावा हमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी मैनेज
1: इस्तेमाल
0: करना है। और मैं यहाँ और ज़्यादा जोर डालूंगी कि हर इमरजेंसी सिचुएशन में हमें क्वालिटी केयर को
1: प्रमोट
0: करना ही होता है अगर हम इंसान की जान बचाना चाहती है।
1: बिल्कुल। तो कविता जी, मेरा अगला प्रश्न यही होगा, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट फिनिश कर लेते हैं, जब आप पेशेंट घर जा रहे हैं, तो उनको दवाई देने से पहले कौन सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है?
0: हमें दवाई देने के लिए एक सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे कॉन्शियस माइंड होते हैं कि हमें पेशेंट सेफ्टी को और मेडिकल एरर्स को प्रिवेंट करना चाहिए। तो हम ये कैसे करते हैं, हमें ये ट्रेनिंग दिया जाता है कि हमें दवाई देने से पहले हमें फर्स्ट पेशेंट्स के नेम जानना चाहिए, उनकी आइडेंटिटी नंबर चेक करना पड़ता है, जाने की सही नेम, सही पेशेंट, सही नेम और सही दवा यानी कि मेडिकेशन, उसके एक्सपायरी डेट, उसका नाम जो होता है, अच्छी तरह से चेक करके सही दवा सही टाइम पर देना चाहिए, सही डोज पर देना चाहिए। और इसके अलावा हमें हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करना पड़ता, अगर कोई भी डिफिकल्टी, अगर कोई भी कंफ्यूजन होते हैं, तो हमें जैसे कि फार्मेसी होते हैं, डिस्पेंसर होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट करके तब कंफ्यूजन हटा के 100%, क्योंकि हमें पेशेंट सेफ्टी मेडिकेशनल एरर्स प्रिवेंट करना है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर गलती होते हैं तो इंसान की पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये हम करते हैं। और दवाई देने से पहले हम काउंटर चेक करते हैं, डबल चेक करते हैं एक नर्सेस के साथ कि अच्छा है, यही देनी चाहिए, और मेडिकेशन की इंटेग्रिटी भी देख चेक करना पड़ता है कि अगर किसी तरह से वो कैसे चीर जाते हैं, ये पेपर जो होते हैं,
1: प्रेस्क्रिप्शन अपने जो भी दवाइयों के कागजात होते हैं,
0: और फाइनली जस्ट बिफोर गिविंग एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन हमें प्रेस्क्रिप्शन के साथ
1: लेकर
0: चेक करके डबल चेक करके तब हम मेडिकेशन
1: दे सकते हैं।
0: इस तरह से हम इंश्योर करते हैं पेशेंट सेफ्टी और प्रिवेंट करते हैं मेडिकेशन
1: जरूर। कविता जी, हम जरूर जानना चाहेंगे, वर्ल्ड नर्सेस डे, जो विश्व नर्सेस दिवस 12 मई को मनाया गया, क्या हमारे मॉरिशस में कोई ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है?
0: जी हाँ, बिल्कुल। हमारे इस दिवस पर 12 मई को विभिन्न गतिविधियों को मनाया जाता है, जो हमारे जो संस्था है हॉस्पिटल्स में पहले होता है, नर्सेस डे को मनाया जाता है, और डिफरेंट एसोसिएशंस यूनियंस के दौरान ये भी विभिन्न गतिविधियों जैसे कि एक्टिविटीज होते हैं, क्वीज होते हैं, इससे कंपटीशन होती है, और जो रिटायरमेंट के अप्रोच करते हैं तो उन्हें रिकॉग्निशन सम्मान करके उन्हें अवार्ड देते हैं, और जैसे और संगीत भी आयोजन करते
1: मतलब
0: हैं
1: पूरा उनके लिए उनके सम्मान में एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम
0: भी, तो ये ज़्यादातर प्रायोरिटी देते हैं एक्टिविटीज़ पर, ट्रेनिंग पर, वर्कशॉप पर, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं,

0: रिकॉग्निशन करते हैं नर्सेस को जिन्होंने कई वर्ष लगा दिया है और रिटायरमेंट
1: अपने अपने पूरे जीवन का मतलब जितना योगदान उन्होंने दिया है सेवा संस्था को, इसके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। हम लगभग आज के इस कार्यक्रम के समाप्ति तक आ पहुंचे हैं। कविता जी, आप हमारे श्रोताओं को कोई इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे?
0: पहले तो मैं हमारे नर्सेस को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, जो जूनियर नर्सेस है, अभी अभी दाखिल हुए हैं हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में, कि हमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के से इंस्पायर होके क्वालिटी केयर, कंपैशनेट केयर प्रोवाइड करना चाहिए। अगर हम 19, 20, 30% भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से इंस्पायर होके क्वालिटी के प्रोवाइड करते हैं तो हमारे प्रोफेशन मीनिंगफुल हो जाते हैं। और मैं समाज को ये बताना चाहती हूँ कि हम नर्सेस, हम इन नर्सिंग प्रोफेशन के और स्वास्थ्य मंत्रालय में हम बहुत कुछ बहुत कार्य करते हैं। हम पेशेंट को सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, हम उनके फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स और अर्ली रिकवरी में बहुत मदद करती है। तो हमें अपने
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।
3: रेडियो मस्ती,
2: फील द मस्ती।
4: टाइम चेक, इट्स 4 PM।
5: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपके साथ पूजा, नमस्कार आपको।
6: नमस्कार मनीषमा, सभी को मेरा नमस्कार। नैरोबी में कल रात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के समापन समारोह में भाग लिया। कई सरकारी नेताओं ने इसमें भाग लिया। वहां पहुंचने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मैत्रीपूर्ण वातावरण में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ बातचीत की। इस शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जिसके माध्यम से अफ्रीकी महाद्वीप के लिए 23 बिलियन यूरो का निवेश जुटाया गया और कई साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए गए। समापन समारोह के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम का आभार प्रकट किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों से सामूहिक अत्याचारों की स्थिति में अपने वेटो अधिकार के वॉलंटरी सस्पेंशन की अपील करने वाली फ्रांसीसी मैक्सिकन पहल में मॉरिशस गणराज्य के शामिल होने के निर्णय की सराहना की। अंतरिम प्रधानमंत्री आर्यन नावामारी ने याद दिलाया कि चिल्ड्रंस बिल में किए गए सुधारों का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को मजबूत करना है। उन्होंने उन सभी लोगों से प्रशिक्षण के महत्व पर भी जोर दिया जिन्हें दुर्व्यवहार के पीड़ितों का मार्गदर्शन और सहायता करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। एक और महत्वपूर्ण घोषणा गाविन ग्लोवर ने की है। उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल तैयार है, ये विधेयक जिसमें स्त्री हत्या के मामलों को भी शामिल किया जाएगा, एक महीने के अंदर संसद में प्रस्तुत किया जाना है। कल देर रात इन्फ्लुएंसर अली रॉयल को गिरफ्तार किया गया। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। कंटेंट क्रिएटर पर भ्रष्टाचार और प्रभाव के दुरुपयोग के मामलों से लाभ उठाने की कोशिश करने तथा कुछ फायदे हासिल करने का संदेह है। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय कौंडमास की निवासी अली बुलाकी, जिन्हें उनके असली नाम से जाना जाता है, पहले से ही एक बेहद विवादित शख्सियत रहे हैं। उनका नाम अक्सर पूर्व सरकार के करीबियों के बीच चर्चा में रहता था। और विदेश की खबरों में, भारत के मध्य और पश्चिमी राज्यों में गर्मी की लू की चेतावनी जारी की गई है। जहां तापमान में भारी बढ़ोतरी, वहां के मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी दी है कि 18 मई तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। वहीं दूसरी ओर भारत के उत्तरी राज्यों में तूफान और भारी बारिश होने लगी है। तो ये थी अब तक की खबरें। नमस्कार और शुभ दिन।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening RM Free Radio.

0: घर ही मिला लीजिएगा। इस समय शाम के 4:04 हुए हैं। जो दोस्तों, शाम का समय है, कुछ अलग है ये मौसम। कहीं पर धूप है तो कहीं पर बारिश, बस कुछ अलग अलग है हमारा। जहाँ जहाँ भी रहते हैं मौसम, वहाँ कुछ अलग अलग सी है। और धूप भी है लेकिन जला नहीं रही, बस कुछ छू रही है। वो कैसे, वो क्या? प्यार से छू रही है हमें। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन, और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी सहेली अनुराधा। सिर्फ आपके लिए इस खास वक्त में एक भेंट है, अभी से लेकर 5 बजे तक। तो फिर आओ, थोड़ी देर के लिए दुनिया को रोके रखते हैं।
1: Continuous music.

तो कभी कभी जिंदगी बिन बुलाए ही खुशियों का पैगाम ले आती है और दिल बस मुस्कुराने लगते हैं। और अनुराधा है आपके साथ इस समय, बस ये शाम आपके लिए, सिर्फ आप ही के लिए।

0: I love you. You love me? I love you. तुम मुझसे प्यार करती हो?
1: जहां जो से कुछ मोहब्बतें इतनी बड़ी होती हैं कि दिल कहते हैं जमीन छोटी पड़ गई, अब तो आसमान पे लिख दो।

शब्बीर कुमार आशा भोसे की मिली जुली आवाजों में एक जान है हम, ये गाना अभी आप ये सुना, बस आपके नाम करते हैं ये शाम 5 बजे तक का। और हाँ, जब मोहब्बत शरारत बन जाए और हर बात में हल्का सा नशा हो तब क्या होता है, तब दिल सच में जीने लगता है। और ये अगला नगमा आपको भी पसंद है और मुझे भी बेहद पसंद है। साल 1978 में बनी फिल्म त्रिशूल का ये नगमा सुनिए, जो बड़ा ही कमाल है, आपको पसंद है और हमें भी बेहद पसंद है।

और बदबाग बदबाग विदेशी जो तयक का रहने वाला है, इन्होंने ये गाना चुना है अपनी प्यारी स्वीटहार्ट के लिए अनुषा खेदन जो पांवता रहती है। चलिए आपकी पसंद सर आंखों पे।

अभी एक नज़र ही काफ़ी होती है दिल को महसूस करने के लिए, वो बात जो लफ्ज़ों में बयान हो। चांदनी जी, आपके नाम ये गीत हम कर रहे हैं।

0: कुमार सानू का गाया गीत 1942 ए लव स्टोरी बहुत ही प्यारा सा नगमा है।
1: तो ऐसा लगा
0: और हाँ दोस्तों, कभी कभी मोहब्बत एक शहर में नहीं होती, वो दूर कहीं होती है, किसी छोटी सी जगह में, किसी सादी सी मुस्कान में, किसी मिट्टी की खुशबू में। और हम पूरी दुनिया घूम के वापस उसी जगह आते हैं, क्योंकि दिल जानता है जो मन कबूल नहीं करता कि घर वहाँ नहीं होता जहाँ हम रहते हैं, पर घर वहाँ होता है जहाँ कोई हमारा इंतज़ार करता है।

0: आप लोगों का साथ भी बहुत ही हसीन है। इस समय आप हमें सुन रहे हैं, बेशक कम अच्छा ही लग रहा है, और इस समय शाम के 4:32 हुए हैं।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

हमारे ये प्रोग्राम सुनते वक्त एक पल की खुशी आ जाए ऐसी हम कामना करते हैं। तो चलिए रेडियो मनोरंजन पर आप सबका दोबारा स्वागत हम करते हैं। 4028070 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए 5250600 पर आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। जी हाँ, रेडियो मनोरंजन पर दिल से मिले दिल प्रोग्राम, वो जगह जहाँ दोपहर भी शाम की तरह लगती है। कुछ लोग कह रहे हैं बाहर धूप है, बारिश है, पर हम कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून है। दिल से मिले दिल प्रोग्राम ने किया हमारे शो में। तो चलिए ये बस थोड़ी देर और हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि 5 बजे तक हम आपका साथ ज़रूर देंगे।

कभी किसी की एक झलक ही काफी होती है पूरी दुनिया को भूल जाने के लिए और दूरियों के बीच भी एक रिश्ता महसूस होता है जैसे हवाओं में किसी का नाम लिखा हो। आप लोगों के मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कविता जो मोचदा के रहने वाली है कहती हैं कि प्रोग्राम लाजवाब है और हमारी दो सहेलियों का नाम जोड़ दीजिएगा हमारे इस प्रोग्राम में अनीता और सुबीता के लिए। ये गाना कविता की ओर से जो मोचदा के रहने वाले हैं लेकिन आपकी जो फरमाइश है वो अगले सप्ताह हम ज़रूर चलाएंगे। फिलहाल आइए येसुदास का गाया हुआ ये गीत सुनिए। येसुदास के कंठ में जो मिठास है आइए इसका अंदाजा लगाइएगा इस अगले नगमे में।

0: मोहब्बत एक रंग नहीं होती, कभी गहरा लाल तो कभी हल्का नीला, कभी भी सीधा बयां भी नहीं होती, लेकिन जब सही गाना बजता है तो समझ आ जाता है कि वही गाना है।
1: 94, 95.6, 98.2 MHz, you're listening RM Free Radio. Radio.
0: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी जो दग उच्च के रहने वाली है।

रहा दोस्तों, कहीं कोई अपने दफ्तर की खिड़की से बाहर देख रहा होगा, सोच रहा होगा किसी के बारे में। कहीं कोई घर में चाय बना रहा होगा और दिल में एक नाम आ रहा होगा। ये गाना उनके लिए और उनके लिए भी जिन्हें याद किया जा रहा है। श्वेनाल जो

श्वेनाल जी, ये गाना आपके लिए आपके भाई श्रवण, भाभी कृति, अभिनव, कियान, नव्य और समस्त तिलक परिवार वालों के लिए।

श्रोताओं याद रहिए ठीक 5 बजे श्री विश्वानंद जी आपका साथ देंगे। तो अभी हमारे चलने का वक्त हुआ है, उम्मीद करते हैं हमारे साथ अच्छे वक्त बिताए होंगे। दिल से मिले दिल, ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक शुभ संध्या आप सबको।

0: 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening RM3 Radio. Radio.
1: अनकही एक कहानी

0: सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्ति ऋषयो हि आप्तकामाः यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्। अर्थात सत्य ही विजय प्राप्त करता है, असत्य नहीं। सत्य के द्वारा ही देवताओं तक पहुंचने वाला मार्ग विस्तृत होता है। जिस मार्ग से पूर्ण इच्छाओं से रहित ऋषि आगे बढ़ते हैं और जहां सत्य का परम आश्रय स्थित है। आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत सूक्ति यह प्रतिपादित करती है कि राजनीति में पारदर्शिता जन विश्वास का आधार बनती है, व्यवसाय में नैतिकता एवं सत्यनिष्ठा दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करती है, शिक्षा में सच्चा व ईमानदार प्रयास वास्तविक ज्ञान संवर्धन सुनिश्चित करते हैं, सोशल मीडिया में प्रमाणित सूचना विश्वसनीयता स्थापित करती है, पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ करती है तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में सत्य एवं प्रमाणित तथ्य ही स्वीकार्य होते हैं। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में अंततः सत्य ही स्थायी उन्नति एवं सफलता का आधार है। प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर अन कही एक कहानी नामक कार्यक्रम में विश्वानंद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। प्रोफेसर राजशेखर भी अपनी स्वरचित कहानी लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हृदय से हम अभिवादन करते हैं। तो देर न करते हुए चलिए सुनते हैं एक अन कही कहानी प्रोफेसर राज की जुबानी।
1: आपका हार्दिक आभार गुरु विश्वा। नमस्कार प्रिय श्रोतागण, रेडियो की मधुर तरंगों पर गुरु बिस्वा के साथ मैं प्रोफेसर राज आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम अनकही एक कहानी में। भारत की पावन धरती पर अनेक ऐसे चरित्र जन्मे हैं जिन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया है कि सत्य केवल एक शब्द नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है, और जब भी सत्य की बात होती है तो एक नाम सूर्य की भांति चमक उठता है, राजा सत्य हरिश्चंद्र। वह राजा जिसने सत्य के लिए अपना राजपाट त्याग दिया, जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपनी

पत्नी और पुत्र तक को बेच दिया, और जिसने शमशान की राख में भी अपने वचन की लौ को बुझने नहीं दिया। प्रिय श्रोतागण, यह वही कथा है जिसे देखकर बालक मोहनदास करमचंद गांधी के हृदय में सत्य की ऐसी ज्योति जली जिसने आगे चलकर उन्हें महात्मा गांधी बना दिया। आज की अनकही कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक राजा ने असंख्य कष्ट सहकर भी सत्य का दामन नहीं छोड़ा, और कैसे उसका जीवन युगों युगों तक मानवता के लिए प्रेरणा बन गया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की यह कथा केवल राजा की नहीं बल्कि सत्य की अमर विजय की कथा है। भारतीय इतिहास और पौराणिक आख्यानों में सत्य का पर्यायवाची यदि कोई नाम है तो वह है राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश रघुकुल के अत्यंत प्रतापी राजा थे। वे अयोध्या के राजा त्रिशंकु सत्यव्रत के पुत्र थे। यह वही गौरवशाली वंश है जिसने आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जन्म दिया। हरिश्चंद्र का व्यक्तित्व केवल एक शासक का नहीं बल्कि एक ऋषि के समान था, जिनके लिए धर्म ही सर्वोच्च सत्ता थी। उनके शासनकाल में अयोध्या न केवल वैभव में बल्कि नैतिकता और न्याय में भी चोटी पर थी। हरिश्चंद्र अपनी दानवीरता, प्रजा वत्सलता और सबसे बढ़कर अपनी सत्य निष्ठा के लिए त्रिलोक में विख्यात थे। उनके बारे में कहा जाता था कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। अर्थात सूरज और चंद्रमा अपनी जगह से हिल सकते हैं, सृष्टि का नियम बदल सकता है, लेकिन हरिश्चंद्र का सत्य कभी विचलित नहीं हो सकता। उनकी पत्नी रानी तारामती उनके धर्म की शक्ति थी, और पुत्र रोहिताश्व उस वंश का भविष्य। हरिश्चंद्र के पास अपार स्वर्ण, विशाल सेना और अटूट साम्राज्य था, किंतु वे इन सबको सत्य के चरणों में तिनके के समान समझते थे। जब राजा हरिश्चंद्र के इसी अडिग सत्य की चर्चा मृत्यु लोक की सीमाओं को लांघकर स्वर्ग के सिंहासन तक जा पहुंची, उनकी इसी सत्य साधना ने उन्हें साधारण राजाओं की श्रेणी से उठाकर अमर देवताओं की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। स्वर्गलोक की सभा लगी हुई थी। दिव्य आभा से दमकता इंद्र सभा का विशाल प्रांगण था, जहां चारों ओर कंचन के स्तंभों पर मनिया जरित थे। देवराज इंद्र अपने दीप्यमान सिंहासन पर विराजमान थे। गंधर्वों का मधुर गान और अप्सराओं का नृत्य थमा ही था कि मुनिराज नारद ने अपनी वीणा की झंकार के साथ सभा में प्रवेश किया। सभा में ऋषि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र भी अपनी समस्त तपस्या के तेज के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र ने गंभीर और ओजस्वी स्वर में देवर्षि नारद का स्वागत किया। देवर्षि नारद, आपका त्रिलोक भ्रमण सदा ही ज्ञान का प्रकाश लेकर आता है। आज हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि क्या वर्तमान में मृत्युलोक के अंधकार में कोई ऐसा देदीप्यमान नक्षत्र है जिसका चरित्र स्वयं देवों के लिए भी वंदनीय हो? क्या कोई ऐसा मानव है जिसे विचलित करना स्वयं काल के लिए भी असंभव हो? नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए बोले, देवराज आपने वह प्रश्न किया है जिसका उत्तर पाकर स्वर्ग भी गर्वित होगा। अयोध्या की पावन धरा पर इस समय इक्ष्वाकु वंश का गौरव राजा हरिश्चंद्र शासन कर रहे हैं। उनका सत्य सूरज की किरणों से भी अखिर प्रखर है। उन्होंने अपने जीवन को सत्य की कसौटी पर ऐसा कसा है कि उनके मुख से निकला हर शब्द पत्थर की लकीर बन जाता है। उस दरबार में महर्षि विश्वामित्र भी बैठे थे। महर्षि

0: विश्वामित्र क्रोध से लाल नेत्रों के साथ खड़े होकर बोले,
1: मुनिवर रुकिए, यह प्रशंसा नहीं बल्कि अतिशयोक्ति की सीमा है। मानव स्वभाव से ही स्वार्थी और चंचल होता है। अनुकूल परिस्थितियों में सत्य की बातें करना सरल है, किंतु विपत्ति की आंधी में बड़े बड़े

0: न किया जा सके।
1: तभी शांत किंतु दृढ़ स्वर में वशिष्ठ मुनि ने बीच में बोले,
2: महर्षि विश्वामित्र, हरिश्चंद मेरा शिष्य है, उसके रोम रोम में सत्य का वास है, उसका चरित्र कंचन के समान शुद्ध है, जिसे आंच में तपाने पर उसकी चमक और बढ़ेगी ही।
1: महर्षि विश्वामित्र कहाँ शांत रहने वाले थे। गुरु वशिष्ठ मुनि की बात सुनते ही उन्होंने गर्जना की और चिल्लाते हुए कहा,
0: तो फिर आज इस सभा में यह चुनौती स्वीकार की जाए, यदि हरिश्चंद्र वास्तव में सत्य की प्रतिमूर्ति है तो उन्हें मेरी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि मैंने हरिश्चंद्र के सत्य को खंडित न कर दिया तो मैं अपनी युगों की तपस्या का फल त्याग दूंगा। देवराज, आप साक्षी रहें, अब अयोध्या के सिंहासन और हरिश्चंद्र के धर्म के बीच एक ऐसा महायुद्ध होगा जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा।
1: महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर नारद मुनि मन मन मुस्कुराते रहे और फिर गंभीर होकर इस विषय पर बोले,
2: ऋषिराज, परीक्षा लेने का आपका अधिकार है, किंतु स्मरण रहे, जहां सत्य का अधिष्ठान होता है वहां स्वयं नियति भी नतमस्तक हो जाती है। इंद्र की सभा का वातावरण अचानक शांत से अशांत हो गया। विश्वामित्र का अहंकार और हरिश्चंद्र का सत्य अब आमने सामने था। देवताओं ने पुष्प वर्षा तो की, किंतु उनके मन में भय था, क्या एक मरणशील मानव महान ऋषि विश्वामित्र के कोप और कपट के समक्ष अपने धर्म की रक्षा कर पाएगा। इधर अयोध्या का राम दरबार सजा था, जो अपनी मर्यादा और न्याय के लिए विख्यात था। महाराज हरिश्चंद सिंहासन पर विराजमान थे। तभी द्वारपाल ने महर्षि विश्वामित्र के आगमन की सूचना दी। महर्षि के मुख पर तपोबल का तेज तो था, किंतु आंखों में हरिश्चंद के सत्य को परखने की ज्वाला धधक रही थी। पूरा दरबार उनके क्रोध और प्रताप से कांप उठा। विश्वामित्र ने गर्जना करते हुए प्रवेश किया और बहुत ही सहज लेकिन थोड़ा क्रोधित होकर कहा,
0: राजन हरिश्चंद्र, क्या रघुकुल की कीर्ति केवल कथनी तक ही सीमित है, या तुम्हारी स्मृति ने भी तुम्हारे वचनों का साथ छोड़ दिया है? रात्रि के अंतिम प्रहर में तुमने स्वप्न में अपना संपूर्ण साम्राज्य, यह स्वर्ण जटित सिंहासन और अपनी प्रजा का अधिकार मुझे दान किया था। क्या एक राजा के स्वप्न केवल निद्रा के विलास होते हैं, या उनमें सत्य का अंश भी शेष है?
1: नारद मुनि ने मंद मंद मुस्कान के साथ इस विषय पर बोला, और आपने देखा कि किस तरह से उनकी बातों को काटने के लिए और अपनी जीत को मनवाने के लिए विश्वामित्र राजा हरिश्चंद की दरबार में पहुंचते हैं और उनसे क्रोधित होकर क्या कहते हैं। आगे देखिए हरिश्चंद इस विषय पर क्या कहते हैं। हरिश्चंद सिंहासन से उतरकर महर्षि के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनका स्वागत करते हुए बोले,
2: ऋषिराज, आपकी चरण इस अयोध्या की भूमि पर पड़े, यह मेरा सौभाग्य है। हरिश्चंद के लिए स्वप्न और जागरण में कोई भेद नहीं है। यदि मेरे चित ने स्वप्न में भी आपको सर्वस्व अर्पण किया है तो वह दान अमिट है। यह राजमुकुट, यह वैभव और यह विशाल साम्राज्य आज से आपका हुआ। मैं आज इसी क्षण इस राज की सीमा का परित्याग करता हूं। कुटिल मुस्कान के साथ विश्वामित्र बोलते हैं,
0: त्याग की बातें सरल हैं राजन, किंतु दान तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक ब्राह्मण को उसकी दक्षिणा प्राप्त न हो जाए। राज्य तो तुमने वह दिया जो तुमने स्वप्न

0: रत्न में अर्पित किया था, किंतु उस महादान की सुवर्ण मुद्राएं कहाँ हैं? क्या तुम बिना दक्षिणा के इस दान को कलंकित करोगे?
1: भगवन, दान देकर उसे अधूरा छोड़ना इक्ष्वाकु वंश की रीति नहीं है, किंतु अब इस राज्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। यहां का कोष अब आपका है। मुझे थोड़ा समय दें, मैं अपनी देह को बेचकर भी आपकी दक्षिणा की एक एक स्वर्ण मुद्रा चुकाऊंगा। विश्वामित्र का चेहरा क्रोध से दमक उठा, उनकी वाणी में अग्नि की ज्वाला थी।
0: सावधान हरिश्चंद्र, सत्य का मार्ग तलवार की धार पर चलने के समान है। यदि एक मास के भीतर तुमने एक सहस्र सुवर्ण मुद्राएं भेंट नहीं की तो मेरा श्राप तुम्हारी संपूर्ण कीर्ति को भस्म कर देगा। स्मरण रहे, अब तुम राजा नहीं एक ऋणी हो।
1: रानी तारा ने दृढ़ता के साथ हरिश्चंद्र के समीप आकर उन्हें सहारा दिया। स्वामी, विचलित ना हो, जिस सत्य के लिए आपने राजपाट तिनके के समान त्याग दिया, उसी सत्य की रक्षा के लिए आपकी अर्धांगिनी और आपका पुत्र रोहित आपके साथ है। हम काशी चलेंगे, जहां न्याय के देवता वास करते हैं। अयोध्या की प्रजा अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने प्रिय राजा को महल से बाहर निकलते देख रही थी। हरिश्चंद्र के सिर पर मुकुट ना था, न हाथ में राजदंड था, तो केवल सत्य का संबल। विश्वामित्र की आंखों में अभी भी कठोरता थी, क्योंकि वे जानते थे कि परीक्षा तो अभी आरंभ हुई है। महलों का सुख पीछे छूट गया था और काशी की अनिश्चित डगर सामने थी।

0: धर्म की नगरी काशी का कोलाहल पूर्ण बाजार सजा हुआ था। सूर्य अपने प्रचंड ताप से धरती को झुलसा रहा था। अयोध्या के पूर्व सम्राट, जिनकी एक दृष्टि मात्र से स्वर्ण की वर्षा होती थी, आज धूल धूसरित वेश में अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खड़े थे। महर्षि विश्वामित्र का क्रूर स्मरण दिलाने वाला शिष्य नक्षत्रक स्वर्ण मुद्राओं की मांग के साथ उनके पीछे खड़ा था। दक्षिणा की अवधि समाप्त हो रही थी और हरिश्चंद के पास अब केवल अपना शरीर शेष था। हरिश्चंद ने गूंजते हुए स्वर में अपनी बोली लगानी शुरू की। काशी के न्यायप्रिय निवासियों, सावधान होकर सुने। क्या इस विशाल जनसमूह में कोई ऐसा है जो इस व्यक्ति को अपना दास बनाना चाहता हो? रघुकुल के इस शरीर का मूल्य केवल महर्षि की दक्षिणा है। क्या कोई मेरे धर्म की रक्षा के लिए मेरा क्रय करेगा? क्या कोई मुझे खरीदेगा? नक्षत्रक ने व्यंगपूर्ण अठास के साथ हरिश्चंद्र को नसीहत दी।
1: शीघ्र करो हरिश्चंद्र, सूर्यास्त्र के साथ ही तुम्हारे सत्य का सूर्य भी अस्त हो जाएगा। यदि दक्षिणा नहीं मिली तो विश्वामित्र का कोप इस काशी को भस्म कर देगा। क्या तुम्हारी यह सुकुमार पत्नी और यह अबोध बालक केवल तमाशा देखने के लिए हैं? इन्हें भी बेचो यदि सत्य प्यारा है तू।
0: तारा ने दृढ़ता से कहा, स्वामी संकोच का त्याग करें। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को और अधिक चमकाती है, उसी प्रकार यह विपत्ति आपके सत्य को निखारेगी। मैं एक राजा की पत्नी और एक वीर की माता हूं। मुझे बेचकर महर्षि का ऋण चुकाएं, ताकि इतिहास या ना कहे कि हरिश्चंद्र ने अपने स्वार्थ के लिए सत्य की बलि दे दी। एक वृद्ध ब्राह्मण ने भीड़ से निकलते हुए कहा,
1: मैं इस स्त्री और बालक को खरीदने के लिए तैयार हूं। ये स्वर्ण मुद्राएं लो और इन्हें मेरे साथ भेजो।
0: रोहित पिता के फटे हुए वस्त्र को पकड़ते हुए बहुत मुश्किल से बोला, पिताजी क्या आप मुझे और माता को इस अपरिचित के साथ भेज देंगे? क्या अब हम कभी अयोध्या नहीं लौटेंगे? हरिश्चंद्र ने हृदय की पीड़ा को दबाते हुए कहा, पुत्र अयोध्या अब केवल एक स्वप्न है। सत्य ही एकमात्र यथार्थ है। जाओ और अपनी माता की छाया बनकर उनके धर्म की रक्षा करना। शमशान का स्वामी कालू भंगी ने गंभीर स्वर में कहा,
2: अब तुम्हारा क्या होगा मान्यवर? यदि दक्षिणा अभी भी शेष है तो स्वयं को मुझे बेच दो। मैं शमशान का रक्षक हूं, क्या तुम वहां चांडाल के दास बनकर रह सकोगे?
0: हरिश्चंद ने मस्तक ऊंचा करके उत्तर दिया, कार्य कोई छोटा नहीं होता कालू, कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं स्वयं को तुम्हारे हाथों बेचता हूं। महर्षि की दक्षिणा पूर्ण हुई, मेरा सत्य सुरक्षित रहा। बाजार के उस चौराहे पर हृदय विदारक दृश्य था। पत्नी और पुत्र एक दिशा में जा रहे थे और राजा दूसरी दिशा में। शमशान की

हरिश्चंद्र के मुख पर एक अलौकिक तेज था, क्योंकि उन्होंने संसार के समस्त सुखों को सत्य की वेदी पर होम कर दिया था। काशी की गलियां साक्षी थी कि एक मानव ने आज देवत्व की ऊंचाइयों को छू लिया था।

0: रात्रि का घनघोर अंधकार था। काशी का महाशमशान, जहां चिताओं की लपटें आकाश से बातें कर रही थी। चारों ओर हड्डियों के चटकने और गिद्धरों की रोने की डरावनी ध्वनियां गूंज रही थी। अयोध्या का वह सम्राट, जिसके मस्तक पर कभी रत्नों का मुकुट शोभा देता था, आज कंधे पर एक मोटा डंडा लिए फटे हुए वस्त्रों में चिताओं के बीच पहरा दे रहा था। उसके मुख पर दुख की छाया नहीं, बल्कि कर्तव्य का तेज था। हरिश्चंद्र अंधकार को चीरते हुए स्वर में लगातार लोगों को सचेत कर रहा था, जागते रहो। इस मरघट की सीमा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक प्राणी को स्मरण रहे, यहाँ का अधिपति मृत्यु है और रक्षक हरिश्चंद्र का कर्तव्य। कोई भी शव यहाँ बिना कर चुकाए अग्नि को समर्पित नहीं होगा, यही मेरे स्वामी का आदेश है और यही मेरा धर्म। छद्म वेश में अचानक अंधकार से प्रकट होकर विश्वामित्र ने कहा,
1: अरे ओ अभागे चांडाल के दास, क्या तू अभी भी उस सत्य का राग अलाप रहा है जिसने तुझे धूल में मिला दिया? देख अपनी दशा, कहां वे महल और कहां वह मूर्दों की गंध। बस एक बार कह दी कि तू हार गया, विश्वामित्र से क्षमा मांग ले और यह सारा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। मैं तुझे पुनः अयोध्या का सम्राट बना सकता हूं।
0: हरिश्चंद्र ने अडीग और तेजस्वी स्वर में जवाब दिया, सावधान राही, यदि तुम ऋषि हो तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि सत्य का मूल्य सिंहासन से नहीं, आत्मसम्मान से मापा जाता है। पद और वैभव नश्वर हैं, किंतु जो धर्म आज इस शमशान में मेरे साथ खड़ा है वही अविनाशी है। हरिश्चंद्र बिक चुका है, पर उसका सत्य अब भी अपराजय है। यहां से चले जाओ, अन्यथा मेरे कर्तव्य की अग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। क्रोध का अभिनय करते हुए विश्वामित्र ने पुनः कहा,
1: मूर्ख, अभी तो तूने केवल एकांत और अपमान सहा है, अभी नियति का सबसे क्रूर प्रहार शेष है। क्या तब भी तू इस पत्थर जैसी निष्ठा को बचा पाएगा?
0: हरिश्चंद्र ने आकाश की ओर देखकर उत्तर दिया, हे विधाता, यदि मेरे सत्य की पूर्णता के लिए अभी और तपना शेष है तो मैं सहर्ष तैयार हूं। जब तक इस देह में प्राण है और इस शमशान में अग्नि, तब तक हरिश्चंद्र अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। शमशान की भयानक शांति में हरिश्चंद्र का यह संकल्प किसी वज्र के समान गूंज रहा था। उधर नियति अपना अंतिम और सबसे भयानक पासा फेंकने के लिए तैयार था। सत्य का साधक अपने कर्तव्य की वेदी पर अकेला खड़ा था, यह जानते हुए भी कि सबसे काली रात अभी आनी बाकी है। आकाश में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार वर्षा हो रही थी। शमशान की अग्नि बुझने को थी, तभी एक विलाप करती हुई स्त्री अपने मृत

0: पुत्र के शव को गोद में लिए वहां पहुंची। वह रानी तारा थी और उसकी गोद में सर्पदंश से मृत राजकुमार रोहित था। भूख प्यास और अपमान से जर्जर हो चुके हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया, किंतु उनका सत्य और कर्तव्य उनके आंसुओं से कहीं अधिक शक्तिशाली था। तारा ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, हे बागी विधाता, क्या तेरे क्रूर विधान की कोई सीमा नहीं? जिस बालक के चरणों की आहट से महल गूंजते थे, आज उस निर्जन शमशान में चिता की प्रतीक्षा कर रहा है। ओ शमशान के प्रहरी, मुझ अभागिनी पर दया कर। मेरे पास इस फूल जैसे बालक का दाह संस्कार करने के लिए एक कौड़ी भी नहीं है। मुझे अनुमति दे कि मैं अपने कलेजे के टुकड़े को अग्नि को सौंप सकूं। हरिश्चंद्र ने अत्यंत धीर किंतु वज्र के समान स्वर में जवाब दिया, देवी, ये रुदन और विलाप इस भूमि के नियमों को नहीं बदल सकते। मैं इस शमशान का दास हूं और मेरा धर्म कहता है कि बिना कर चुकाए यहां कोई भी शव नहीं जल सकता। यदि तुम रघुकुल की पुत्रवधु हो तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि विपत्ति में भी मर्यादा का त्याग करना पाप है। तारा चौंकते हुए और स्वर को पहचानते हुए बोली, स्वामी, क्या यह आप हैं? अयोध्या के सूरज आज इस अंधेरे मरघट में पहरा दे रहे हैं। देखिए अपने पुत्र को, जिसके लिए आपने स्वर्ण के झूले बनवाए थे, वह आज मिट्टी में पड़ा है। क्या एक पिता का हृदय इतना कठोर हो सकता है कि वह अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए कर मांगे? हरिश्चंद्र ने नेत्रों में आंसू भरकर किंतु स्वर में तेज लिए हुए कहा, तारा, यह पिता नहीं, यह एक रक्षक बोल रहा है। मैं बिक चुका हूं, मेरा शरीर मेरे स्वामी का है। यदि आज मैंने मोहवश बिना मूल्य लिए दाह संस्कार की आज्ञा दी तो मेरा सत्य कलंकित हो जाएगा। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो अपनी इस फटी हुई साड़ी का आधा भाग फाड़ कर मुझे दे दो, वही इस अभागे पिता का कर होगा और वही तुम्हारे पुत्र की अंतिम विदाई। तारा ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, धन्य है आपका सत्य। यदि धर्म की रक्षा के लिए यही मूल्य शेष है तो यही सही। जैसे ही तारा अपनी साड़ी फाड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, आकाश में महानाद होता है। शमशान की वह भयावह सन्नाटा अचानक एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता है। आकाश से दुंदुभियां बजने लगती हैं, पुष्पों की वर्षा होने लगती है और साक्षात देवराज इंद्र, महर्षि विश्वामित्र और धर्मराज प्रकट होते हैं। हरिश्चंद्र के हाथ थम जाते हैं, उनके शरीर की मलिनता दिव्य आभा में बदल जाती है और काल की गति रुक जाती है। विश्वामित्र ने अचानक प्रकट होकर कहा,
1: ठहरो हरिश्चंद्र, रुक जाओ तारा, यह श्मशान नहीं, यह मानवता की विजय का शिखर है। तुम जीत गए हरिश्चंद्र, तुमने वह कर दिया है जिसकी कल्पना मात्र से देवलोक कांप उठता है।
0: धर्मराज ने भी अत्यंत सौम्य में और ओजस्वी स्वर में हरिश्चंद्र से अनुरोध किया,
2: ठहरो शक्तिव्रत पुत्र हरिश्चंद्र, अपने इन करों को रोक लो। आज धर्म स्वयं तुम्हारे समक्ष नतमस्तक है। तुमने उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है जिसे देख स्वयं काल भी कांप उठा था। मृत्युलोक के इतिहास में तुम्हारे जैसा सत्यधीर ना कभी हुआ और ना होगा।

0: इंद्र ने भी आदर के साथ आग्रह किया, राजन तुम्हारी सत्यनिष्ठा ने स्वर्ग के गौरव को भी छोटा कर दिया है। देखो तुम्हारा पुत्र रोहित मरा नहीं था, वह तो केवल तुम्हारी अधिकता की एक मायावी परीक्षा थी। और इंद्र के स्पर्श मात से रोहित सोकर उठने की भांति जीवित खड़ा हो जाता है। महर्षि विश्वामित्र ने गर्व और संतोष के साथ कहा,
1: हरिश्चंद्र आज मेरा अहंकार पराजित हुआ और तुम्हारा सत्य विजयी। मैंने तुम्हारी तपस्या को भंग करने के लिए नहीं बल्कि संसार को यह दिखाने के लिए यह स्वांग रचा था कि मनुष्य का आत्मबल देवत्व से भी महान हो सकता है। यह लो तुम्हारा राज्य, तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारी प्रजा सब अक्षुण है। तुम्हारी परीक्षा लेने वाला विश्वामित्र आज तुम्हें स्वयं आशीर्वाद देता है।
0: हरिश्चंद्र ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से घुटनों के बल बैठकर सादर आग्रह किया, ऋषिराज यह मेरा सामर्थ्य नहीं बल्कि सत्य की ही शक्ति थी। यदि आप मेरा सर्वस्व ना छीनते तो मैं अपनी आत्मा की इस गहराई को कभी नहीं जान पाता। हे देवों, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें कि संसार में कोई भी मनुष्य अपने धर्म और सत्य के मार्ग से कभी विचलित ना हो, चाहे उसे कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़े। तारा भी पुत्र को हृदय से लगाकर बोलती है, स्वामी आज सिद्ध हुआ कि जहां धर्म है वहां साक्षात नारायण का वास है। हमारा वनवास और शमशान का कष्ट आज सार्थकता पा गया। संपूर्ण चराचर जगत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जय के घोष से गूंज उठा। राजा रानी और पुत्र को सदैव स्वर्ग जाने का निमंत्रण मिला, किंतु प्रजावत्सल हरिश्चंद अपनी प्रजा के बिना स्वर्ग जाने से मना कर दिया। उनके इस त्याग से प्रभावित होकर पूरी अयोध्या सत्य के प्रभाव से अमर हो गई।

0: तो प्रिय श्रोताओं, अभी अभी आपने एक बहुत ही सुंदर कहानी का रसा स्वादन किया जिसका शीर्षक है राजा सत्य हरिश्चंद। और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रोफेसर राज जी ने उस कहानी को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। प्रोफेसर जी, हमें यह बताइए कि इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है।
1: बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा है प्रिय श्रोतागण। राजा सत्य हरिश्चंद की कथा केवल इतिहास या पुराण की कहानी नहीं, यह मनुष्य के आत्मबल, धर्म और सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह कथा हमें सिखाती है सत्य का मार्ग सरल नहीं होता, उस मार्ग पर चलने वाले को अपना सुख, वैभव और कभी कभी अपना सर्वस्व भी त्यागना पड़ता है
0: जी।
1: धर्म परिस्थिति देखकर नहीं बदलता। राजा हरिश्चंद्र ने महलों में भी सत्य निभाया और शमशान में भी। सच्चा चरित्र वही है जो विपत्ति में भी अडिग रहे। जब उनका राज छिन गया, परिवार बिछड़ गया और पुत्र तक मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया, तब भी उन्होंने अपने कर्तव्य और सत्य को नहीं छोड़ा। सत्य अंततः विजयी होता ही है। अंत में देवताओं को भी राजा हरिश्चंद के सामने नतमस्तक होना पड़ा। प्रिय श्रोतागण, यही कारण है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्य हरिश्चंद की कथा ने उनके जीवन को बदल दिया
0: जी।
1: इस कथा का सार, सत्य कभी हारता नहीं, केवल परीक्षा लेता है। धर्म वही है जो कठिन समय में भी साथ ना छोड़े, और जो व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा रहता है, समय स्वयं उसके चरणों में झुक जाता है। हम सभी को पता है कि गांधी जी ने इसी सत्य को स्वीकार किया और उन्होंने इसी सत्य पर आधारित सत्याग्रह
0: जी
1: का भी सहारा लिया, और इसी सत्याग्रह के आधार

0: हार पर
1: के फलस्वरूप
0: फलस्वरूप हम जानते हैं कि भारत को भी स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई और मॉरिशस को भी स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई।
1: जी हाँ।
0: तो गुरु बिस्वा, मेरे भी मन में एक सवाल है आपके लिए
1: जी,
0: कि क्या कभी आपके जीवन में या हो सकता आया भी हो कि राजा सत्य हरिश्चंद की तरह आपको भी सत्य का चुनाव करना पड़े
1: जी,
0: और अपना सर्वस्व निछावर करना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे?
1: जी हाँ, ये आसान परिस्थिति नहीं होगी, लेकिन जहाँ सत्य की बात होती है तो श्रोताओं आप भी यह स्वीकार करेंगे कि सत्य के मार्ग पर चलना हमारे लिए बहुत ही हितकर होता है। देखिए, जब हम कोई भी बात किसी से कर रहे हों, अगर हम सच बात कहें तो हमें मन की शांति प्राप्त होती है, और जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो चाहे हमें कुछ समय बाद ही प्रगति मिले या कामयाबी मिले, लेकिन जब वह सफलता हमें प्राप्त होती है तो एक अजीब प्रकार की खुशी
0: और
1: शांति मिलती है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि मैं तो सत्य के मार्ग ही पर चलूँगा, क्योंकि ये एक तप के समान है। कबीर जी भी कह चुके हैं, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सत्य तो एक सबसे बड़ा तप है,
0: तप तपस्या,
1: तप के समान है, तपस्या है। उसको करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए।
0: और प्रिय श्रोतागण कहते भी हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए हमें 100 बार झूठ बोलना पड़ता है
1: जी,
0: तो उससे अच्छा है कि एक बार, चाहे हमारे माता पिता, हमने कोई बड़ी सी बड़ी गलती की हो
1: जी जी,
0: यदि हम बहुत ही सहज भाव से अपने माता पिता के सामने या जो भी हमारे सामने उपस्थित हैं, हम क्षमा मांगते हुए यदि अपने सत्य को उनके सामने उजागर करें तो वे भी हमें क्षमा कर देंगे।
1: और यह बात भी सत्य है कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमें आत्मग्लानी भी होती है,
0: आत्मग्लानी भी होती है,
1: तो इससे हम बचेंगे यदि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे। कुछ भी हो आप सत्य बोलें, और हमेशा जैसे बोलते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है।
0: और बौद्ध धर्म और जैन धर्म
1: जी,
0: ये जो बहुत बड़े दर्शन हैं, यहाँ सबसे पहले गौतम बुद्ध हो या महावीर हो, उन्होंने यही कहा, सदा सत्य बोलो,
1: सत्यम चर सत्यम वद।
0: और हम जानते हैं कि महाभारत में एक बहुत बड़े चरित्र भी हुए
1: जी,
0: महान युधिष्ठिर,
1: युधिष्ठिर
0: है ना, पांडव में सर्वश्रेष्ठ पुत्र
1: जी
0: पांडु का, उन्होंने यही कहा सत्य वचन हमेशा जो है उन्होंने स्वीकार किया, यानी हमेशा सत्य बोलना,
1: सत्य के मार्ग पर चलते रहो।
0: और सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पहले अपने सभी शिष्यों को, चाहे वो कौरव हो या पांडव हो, एक ही शिक्षा दी, हमेशा सच बोलना है। तो प्रिय श्रोतागण, हर बार आपसे लोकोक्तियां पूछी जाती हैं, इस बार हम लोग कुछ लोकोक्तियां आपके लिए लेकर आए हैं। भोजपुरी में है, जितना बोलब तितना खोलब, भोजपुरी में जो लोकोक्ति है फिर से सुन लीजिए, जितना बोलब तितना खोलब। आप लोग इस पर विचार कीजिएगा कि इसका क्या अर्थ होता है, और अगले कार्यक्रम में हम इसका अर्थ भी आपको जरूर बताएंगे। इसी तरह हिंदी में भी एक लोकोक्ति आपके सामने है, बाप न मारे मेढकी बेटा तीरंदाज, बाप न मारे मेढकी बेटा तीरंदाज। पिछली बार जो लोकोक्तियाँ आपसे पूछी गई थी उसका अर्थ और उस पर आधारित कहानी गुरु बिस्वा आपको बताएंगे और सुनाएंगे। भोजपुरी में जो लोकोक्ति थी वह यह है, सच देर से जीते ला पर हारे लाना।
1: जी हाँ, इसका अर्थ है सच भले देर से जीते लेकिन हारता कभी नहीं।
0: जी, और हिंदी में जो लोकोक्ति आपके सामने प्रस्तुत की गई थी वह इस प्रकार है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती।
1: जी, इसका अभावार्थ है एक ही परिवार के सभी सदस्यों का स्वभाव या योग्यता एक जैसी नहीं हो सकती, सभी में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। श्रोताओं, इससे संबंधित एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपके समक्ष भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामलाल के 5 बेटे थे, 5ों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। बड़ा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज था, दूसरा खेती में निपुण, तीसरा संगीत में रुचि रखता था, चौथा खेलकूद में आगे था, और सबसे छोटा बहुत दयालु एवं सेवा भाव वाला था। रामलाल कभी भी उनकी तुलना नहीं करते थे, वे हमेशा कहते पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो।

0: होती, फिर भी मिलकर हाथ को मजबूत बनाती हैं जब मुट्ठी का रूप धारण कर लेती है। समय बीतने पर सभी बेटों ने अपनी अपनी योग्यताओं से परिवार को गौरवान्वित किया। तब सभी लोगों को समझ आया कि हर व्यक्ति की विशेषता अलग होती है और यही विविधता परिवार की असली ताकत होती है और यही इसे सुदृढ़ भी बनाती है। इसीलिए कहते हैं एकता में बल।
1: जी, और प्रिय श्रोतागण, मैं आपको यहाँ विशेष कर बता दूं कि गुरु बिस्वा जो हैं, हमेशा हिंदी में जो लोकोक्ति हम लोग पूछते हैं उस लोकोक्ति पर अपनी एक स्वरचित कहानी बनाकर लाते हैं और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आप लोग भी प्रेरणा लें और आप भी मुहावरे और लोकोक्तियों पर एक छोटी सी कहानी लिखें और अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। आप लोगों के लिए एक आमंत्रण संदेश भी है। राजा हरिश्चंद की यह कथा हम सभी से एक प्रश्न पूछती है, क्या हम सचमुच सत्य के साथ खड़े रह पाते हैं जब जीवन हमें कठिन परीक्षा में डालता है? क्या आपने कभी ऐसा क्षण देखा है जब सत्य बोलना आसान नहीं था, फिर भी आपने सत्य का साथ चुना? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने कठिनाइयों के बावजूद ईमानदारी और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा? अनकही एक कहानी आपको आमंत्रित करता है अपनी ऐसी ही प्रेरणादायक सच्ची कहानियां हमारे साथ साझा करने के लिए। आपकी कहानी किसी निराश मन में साहस जगा सकती है, किसी भटके हुए व्यक्ति को सत्य का मार्ग दिखा सकती है। अपनी रचनाएं हमें भेजें professorrajsekhar@gmail.com पर। चयनित कहानियां हमारे रेडियो कार्यक्रम में प्रसारित होंगी और आगे चलकर एक विशेष पुस्तक का हिस्सा बनेंगे। तो आइए हम अपने भीतर के सत्य को पहचाने, हर परिस्थिति में धर्म का साथ देने का संकल्प लें और राजा हरिश्चंद की तरह सत्य को जीवन का सबसे बड़ा धर्म बनाएं। सुनते रहिए, लिखते रहिए, जुड़े रहिए अनकही एक कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राज जी इन महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए। श्रोताओं, कहा गया है, नास्ति सत्य धर्मो समो, नास्ति सत्य परम तप, नास्ति सत्य समम ज्ञानम, तस्मात् सत्यम न लोपयेत। अर्थात सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है, सत्य के समान कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए कभी भी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, शिक्षा, कानून आदि क्षेत्रों में सत्य की वास्तविक आधारशिला है। आदर्श विद्यार्थी को सत्यवादी होना चाहिए। कुसंगति में पढ़कर कोई छात्र या बच्चे अपने माँ बाप या शिक्षक से झूठ न बोलें। यदि झूठ बोलने की प्रवृत्ति बचपन से ही शुरू हो जाए तो इससे व्यक्ति को भविष्य में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। झूठे व्यक्ति को संसार में कोई पसंद नहीं करता। जो सच्चा होता है वही अच्छा होता है, वही विश्वसनीय बन जाता है। तो श्रोताओं, अब हम अपने कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। अब विश्वानंद और प्रोफेसर राज को आजा दीजिए। अगले बुधवार को पुनः एक ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी लोगों ने हमें बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।

0: सभी को नमस्कार। 23 मई की तारीख बुधवार का दिन, स्वागत आप सभी का 6 बजे के समाचारों में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नैरोबी में प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति से की मुलाकात, दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट संबंधों पर की चर्चा। अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 समिट का समापन, कई अहम क्षणों के साथ हुआ। मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र में बड़े पैमाने पर अत्याचार की स्थिति में वेटो अधिकार को सीमित करने वाली फ्रांस मेक्सिको की पहल का किया समर्थन। अंतरिम प्रधानमंत्री ने कहा कि चिल्ड्रंस बिल में किए गए संशोधन का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को और मजबूत करना है। उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, इस बात का ऐलान आरियान नवामारी ने पोर्टवे में किया। विदेश में पश्चिम एशिया संकट, बढ़ते तेल कीमतों और विदेश मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार ने सोना चांदी पर आयात शुल्क को बढ़ाया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की ये खबर मुख्य है। नैरोबी में आज सुबह प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने स्टेट हाउस में केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मॉरिशस केन्या के बीच उत्कृष्ट संबंधों पर चर्चा की, खासकर राजनयिक और व्यापारिक सहयोग को लेकर। उन्होंने अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के निष्कर्षों पर भी विचार विमर्श किया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम और विलियम रुटो ने इलाकाई सहयोग को और मजबूत करने तथा क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम नैरोबी स्थित स्टेट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो के साथ खास मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के सकारात्मक परिणामों तथा मॉरिशस और केन्या के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की।
2: We had a great meeting with the Prime Minister. We appreciate his coming to Nairobi. We appreciate his ideas and insights and his contribution to the success of this Africa Forward Summit. And it provides an opportunity for us to prosecute our position, joint position of Mauritius, Kenya and the rest of the continent to contextualize our relationship with the rest of the world so that we are better understood. And we can drive our interests using the Africa Union working together, because the situation at the moment requires solidarity.
1: Dr. Navin Ram Gulam ke anusar Kenya kai kshetron mein Mauritius ka ek mahatvapurna sajhedar hai, khas roop se vyapar kshetra mein. Unhone dono deshon ke beech khas sambandhon ko bhi rekhankit kiya.
3: I want to thank President William Ruto, because he's made a wonderful conference. It was very, very positive. As the President said, we need this solidarity. It was a very successful conference, and we're moving forward from this. I reminded President Ruto that I first came to Kenya to meet President Jomo Kenyatta with my father, Sir Steve Sagawa. And he sent Tom Mbuya, who was a constitutional lawyer, to help us draft our constitution before independence.
1: बैठक में अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के बाद जारी नैरोबी घोषणा के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। उन विभिन्न परियोजनाओं और साझेदारियों को अमल में लाने पर ध्यान दिया गया, जिनकी घोषणा अफ्रीकी महाद्वीप की मजबूती और समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से की गई।
0: कोंगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सासू न्गवेसो जुलाई महीने में औपचारिक मिशन पर मॉरिशस आएंगे। इस दौरे को लेकर आज दोपहर बाद नैरोबी में प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम और कोंगो के उप प्रधानमंत्री जोसेफ कबुया के बीच चर्चा हुई। मुख्य रूप से कोंगो में आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए मॉरिशस की सहायता तथा मॉरिशस के लिए हाइड्रोकार्बन आपूर्ति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले दिन के दौरान सरकारी नेता ने लुईस मुशिकीवाबो से भेंट की। चर्चा हिंद महा

0: सागर क्षेत्र में ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी फ्रांकोफोनी के सदस्य देशों के विकास और प्रगति पर केंद्रित रही। नैरोबी में आयोजित अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 समिट का समापन कई अहम क्षणों के साथ हुआ। इस दौरान मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र में बड़े पैमाने पर अत्याचार की स्थिति में वीटो अधिकार को सीमित करने वाली फ्रांस और मेक्सिको की पहल का समर्थन किया। इस कदम का स्वागत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया। वहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने समुद्री देशों के अलायंस के गठन का आह्वान किया, साथ ही अफ्रीका के विकास को तेज करने के लिए 23 बिलियन यूरो के निवेश जुटाए जाने की घोषणा की गई। समापन समारोह अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, ब्लू इकोनॉमी और अफ्रीकी समृद्धि जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहा। ज़रा विस्तार इस रिपोर्ट में आप सुन पाएंगे।
1: मंगलवार की रात नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 का समापन समारोह चला। कई राष्ट्र एवं सरकारी नेता उपस्थित रहे, जिनमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शामिल रहे। उनके वहां पहुंचने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनके साथ मैत्रीपूर्ण माहौल में भेंट की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डॉक्टर नवीन राम गुलाम को इस बात के लिए आभार प्रकट किया कि उन्होंने बंद कमरे में लगे एक प्लेनरी सत्र के दौरान फ्रांसीसी मेक्सिकन पहल के साथ जुटने के मॉरिशस का फैसला लिया है, जिसके तहत राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद के सदस्यों से ये मांग की गई है कि सामूहिक अपराधों के मामलों के लिए वेटो के उनके अधिकार प्रयोग का स्वेच्छा से निलंबित किया जा सके। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, हम सामूहिक रूप से संगठित भी हुए हैं और अपने बयान में सभी सदस्यों का समर्थन है और हम मॉरिशस के प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करते हैं जो इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। इसका मकसद है राष्ट्रसंघ में सामूहिक अपराधों के मामलों के संबंध में वीटो का हक इस्तेमाल करने की बात समाप्त करना। शिखर बैठक के दौरान डॉक्टर नवीन राम गुलाम के ब्लू इकोनॉमी पर केंद्रित संबोधन का अच्छी तरह स्वागत किया गया। फ्रांस के आउटर आइलैंड एवं मत्स्य उद्योग मंत्री कैथरीन शाबो ने ओशियन राष्ट्र अलायंस कायम किए जाने की मॉरिशियन प्रधानमंत्री की अपील के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हमारा सामूहिक भविष्य सागर के साथ है, इसका संरक्षण करना है, शानदार तरीके से आर्थिक विकास करने की संभावनाएं हैं। मॉरिशस समुद्री राष्ट्र है, बहुत कुछ बांट सकते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी राय भी दी है, सागरीय राष्ट्र गठबंधन एक साथ मिलकर कई विषयों पर विचार कर सकते हैं। इस महाद्वीपीय सम्मेलन की बदौलत अफ्रीका के विकास के लिए 23 बिलियन यूरो के निवेश की उपलब्धता तय हो पाई है। शिखर बैठक की मेजबानी करने वाले केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि संस्करण अफ्रीका की समृद्धि और मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण चरण रहा है। उन्होंने कहा, हमारे सामने जो कार्य है वो है हर एक वचन को हकीकत में तब्दील करना, बातचीत को लागू करना और अफ्रीका के लोगों के लिए महत्वाकांक्षा को ठोस प्रगति में परिवर्तित करना, क्योंकि अफ्रीका इस बात का इंतजार नहीं कर रहा कि भविष्य में उसे आमंत्रित किया जाए, बल्कि अफ्रीका अपने मित्रों के साथ मिलकर अभी ही भविष्य संवार रहा है। इसके अलावा अफ्रीका में ठेकेदारी सफलता सुनिश्चित करने के वास्ते 5 प्रमुख चुनौतियों पर भी जोर दिया गया। शिक्षा, ऊर्जा, मूल ढांचा, नौकरी और भारी पब्लिक एवं प्राइवेट निवेश।
0: अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के दौरान प्रधानमंत्री ने सेनेगल के राष्ट्रपति के साथ ब्लू इकोनॉमी पर एक सत्र की सह अध्यक्षता की। इस चर्चा में अफ्रीका और कई देशों के मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। अपने संबोधन में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी केवल एक रणनीतिक प्राथमिकता नहीं बल्कि एक अस्तित्व से जुड़ा विषय है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को सुनते हैं।
2: L'océan n'est plus un décor géographique. C'est une infrastructure vitale de souveraineté, de sécurité alimentaire, de transition énergétique et de puissance économique. Nous vivons une époque de transformation profonde. Les équilibres économiques, géopolitiques et environnementaux sont en mutation. Avec les tensions accrues que nous voyons
3: महासागर एक भौगोलिक सजावट नहीं, ये एक अहम ढांचा है संप्रभुता के लिए,

खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और आर्थिक महाशक्ति के लिए। हमें गहरे परिवर्तनशील युग में जी रहे हैं। आर्थिक संतुलन, भू राजनीतिक और पर्यावरणीय संतुलन बदल रहे हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव देख सकते हैं। इस युद्ध ने समंदर को तनाव का केंद्र बना दिया। समुद्री परिवहन ठप हो गया है।

0: इस बीच हम सभी उसकी स्थिरता से फायदा उठाते हैं, लेकिन आज मध्य पूर्व युद्ध मौजूदा संकट से इसकी स्थिरता भी प्रभावित है। मॉरिशस के पास 2.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जो उसकी भूमिगत क्षेत्र से कहीं ज्यादा है। जमीनी तौर पर छोटा राष्ट्र, लेकिन समुद्री तौर पर विशाल। जून 2025 में फ्रांस ने महासागर पर राष्ट्र संघ के तीसरे कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की, साथ में सोमे अफ्रीक पोलो सेयों लगाया गया। तब से हमारी प्रतिबद्धता और राष्ट्रपति माक्रों की मांग की बदौलत बायोडायवर्सिटी पर BBNJ जनवरी 2026 से लागू है।
1: Et suite à l'appel du président Macron lors de la conférence sur l'océan, l'accord sur la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, aussi connu comme le traité BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction, est entré en vigueur en janvier 2026. Il nous revient désormais de mettre le traité en application en conformité avec nos législations nationales. Mais soyons clairs. Pas d'économie bleue durable sans océan vivant. La gouvernance est donc la condition sine qua non.
2: अंतरिम प्रधानमंत्री यागया नवामारी ने कहा कि चिल्ड्रंस बिल में किए गए संशोधन का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा और उनके समग्र विकास को मजबूत बनाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों की देखरेख और सहायता से जुड़े सभी लोगों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं अटर्नी जनरल गावी ग्लोवर ने घोषणा की कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल तैयार हैं। उन्होंने बताया कि क्रिमिनल कोड में भी संशोधन किए जाएंगे, जिनमें महिलाओं की हत्या और वैवाहिक बलात्कार के मामलों को भी शामिल किया जाएगा। इन बातों का ऐलान फामोमर्स द्वारा पोटवी नगर पालिका में आयोजित घरेलू हिंसा पर के एक सिंपोजन के दौरान किया गया। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
3: 14 coups de couteau, 14 pendant la salle d'opération. Organes abattus, affectés, les reins, les cœurs, thyroïdes et caillots de sang dans la tête. Et 4 fois dans l'amour. Mon parcours de 26 ans de vie conjugale avec mon époux, qui est malade, on appelle une pervers narcissique.
0: Rachel, Sylviane, Rishmi et Zafira. चार महिलाएं, चार कहानियां जो घरेलू हिंसा और परित्याग की पीड़ा से जुड़ी हैं। एक गंभीर और ध्यानपूर्वक सुनने वाली सभा के सामने उन्होंने अपने दिल दहला देने वाले अनुभव साझा किए। इन गवाहियों ने सीधे तौर पर आगया नवामारी और गाविन ग्लोवर को झकझोर दिया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ितों की सुरक्षा और मजबूत किया जाना चाहिए, खासकर चिल्ड्रंस बिल में प्रस्तावित सुधारों के माध्यम से। उन्होंने कहा कि कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, साथ ही उन लोगों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए जो दुर्व्यवहार के पीड़ितों की सहायता करते हैं।
4: Moi, on trouve femme policière qui plus qui agit plus mauvais qui manjom. Alors, quitte fois, je suis sûr qu'il y a un problème dans cette case. Bon, pas connu, mais il y a une raison. Mais moi, penser que pour tout ça, bonne raison là, nous besoin et a une formation appropriée à tout ça, bonne monde qui pour besoin applique la loi. Et a aussi un changement qui nous besoin faire dans Children's Act.
0: वहीं अटॉर्नी जनरल गाविन ग्लोवर ने घोषणा की कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। अब महिलाओं की हत्या के मामलों को भी पेनल कोड में शामिल किया जाएगा।
5: Bien la loi très importante parce que accroché à ça nous pouvons faire un amendement au criminal code pour qui nous introduire l'offense de féminicide. Et aussi marital rape. Donc, je pensais qu'il fallait faire ça en même temps pour que ça c'est complémentaire.
6: Madame, la peine perdue, c'est qu'ils devaient vivre.
0: इसी संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य आशा का संदेश देना और पीड़ितों को

0: छुपी तोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना है।
1: Ensemble, ça va nous partager là pour une fondation Charter on Family Abandonment, un document qui nous peut soumettre gouvernement pour demander reconnaissance, protection et réforme.
0: सभा में पोर्टवी के बिशप मोनसेनियर जोरोन, अन्य धार्मिक प्रतिनिधि, ओम्बट्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन के सदस्य तथा पुलिस बल के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, जिन्होंने घरेलू हिंसा और परित्याग के खिलाफ सामूहिक रूप से तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया।
2: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अली रॉयल्स को कल देर रात गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी एफसीसी की जांच के तहत की गई। कंटेंट क्रिएटर अली बुलाकी पर आरोप हैं कि उन्होंने करप्शन और इन्फ्लुएंस ट्रैफिकिंग से जुड़े मामलों में कुछ लाभ हासिल किए और करने की कोशिश की। कौंदमास के रहने वाले अली रॉयल्स सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चित और विवादित शख्सियत रहे हैं। पिछले सरकार के दौरान उसने दावा किया था कि चर्चित मिसी मुस्ता स्टूडियो क्लिप्स तैयार करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया। आज उसे अदालत फ्लक की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उसकी रिहाई पर आपत्ति व्यक्त की और उसे वापस हिरासत में लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े अलग अलग श्रमिक संगठनों ने स्वास्थ्य कर्मचारियों पर बढ़ते हमलों के मामलों को लेकर चिंता जताई। कल और आज आयोजित प्रेस सम्मेलनों में उन्होंने सरकार से अपील की कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जाए। देश की खबरों में जो आज सुर्खियों में, उनमें पश्चिम एशिया संकट, बढ़ती तेल कीमतों और विदेशी मुद्रा भंडार पर बढ़ते दबाव के बीच भारत सरकार ने सोना, चांदी और प्लैटिनम पर आयात शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। अब सोना और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़कर 15% कर दिया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों से एक वर्ष तक सोने की खरीद से बचने की अपील की ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: भारत सरकार ने सोना और चांदी आयात करने पर लगने वाले शुल्क में बड़ा इजाफा किया है। अब इन कीमती धातुओं पर 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी और 5% कृषि मूलढांचा और विकास सेस लगाया जाएगा। कुल आयात शुल्क बढ़कर 15% हो गया है। प्लैटिनम पर भी शुल्क बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और समुद्री व्यापार मार्गों में अस्थिरता बढ़ी है। भारत जो दुनिया के सबसे बड़े कच्चा तेल आयातकों में शामिल है, ऊंची तेल कीमतों और आपूर्ति संकट से प्रभावित हो सकता है। ऐसे में सरकार विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने और गैर जरूरी आयात को कम करने की कोशिश कर रही है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से एक साल तक सोने की खरीद से बचने की अपील की है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। भारत अपनी जरूरत का लगभग पूरा सोना विदेशों से आयात करता है, लेकिन हाल के महीनों में शेयर बाजार से कमजोर रिटर्न और सोने की बढ़ती कीमतों के बीच निवेश के तौर पर सोने की मांग तेजी से बढ़ी है। उद्योग जगत का मानना है कि इस फैसले से सोने और चांदी की मांग में गिरावट आ सकती है और लोग हल्के वजन के गहनों की ओर रुख कर सकते हैं। हालांकि कारोबारियों ने चेतावनी भी दी है कि ऊंचे आयात शुल्क के कारण सोने की तस्करी फिर बढ़ सकती है। सरकार का कहना है कि देश के विदेशी मुद्रा को कच्चे तेल, खाद, रक्षा, औद्योगिक कच्चे माल और महत्वपूर्ण टेक्निक जैसे आवश्यक आयातों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
2: जानिए मौसम का हाल। हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज रात और कल सुबह पूर्वी इलाकों, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरे रहेंगे। हल्की बारिश होगी। ऊंचाइयों पर दिन के दौरान भी बारिश होती रहेगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 18 से 20, अधिकतम 24 से 26। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 28 से 30। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवालिका के परे 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह सूर्योदय 6:31 पर, शाम को सूर्यास्त 5:42 पर होगा।

देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग टेक्निकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। महात्मा गांधी रोड पेटी राफ्ली में, महात्मा गांधी रोड पेटी राफ्ली में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शांति भोलू, श्रीमती शांति भोलू पैदाशी नाम रामदेव और जो बेबे के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है और थी। कल दिन के 2:30 बजे उनके बेटे विक्की भोलू के मकान महात्मा गांधी रोड पर चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कपमालो हो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2:30 PM बुआशहरी रोड मोका में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री दयानंद ओकुल जो ज्ञानदेव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान बुआशहरी रोड मोका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 1 PM प्रोविडेंस रोड पोस्ट डे फ्लैक में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री धुरंधरनाथ जीवन जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके बेटे अनिकेत जीवन के मकान प्रोविडेंस रोड पोस्ट डे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेमोंग पोस्ट डे फ्लैक की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11:30 AM ऋषि दयानंद रोड थ्वाबुचिक में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जयवंती ओबिलक पैदाशी नामो केस और जो माला के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति देवनारायण मोहन ओबिलक के मकान ऋषि दयानंद रोड थ्वाबुचिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM कालीमाई रोड बालो में 73 साल की 73 ईयर्स ओल्ड की कुमारी भूमावती गोहवादू जो दमन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी और पहले टेंपल रोड बेलव्यू मोगैल रहा करती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके भतीजे दिनेश शंकर गोहवादू के मकान कालीमाई रोड बॉलो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितरों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM सुल्फेरिनो नंबर दो वाकुआ में 68 साल की 68 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनमंती फोगू पैदाशी नाम भंतवा और जो धनमंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके दामाद उमेश दसोया के मकान सुल्फेरिनो नंबर दो वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालांस सुल्फेरिनो नंबर 5 वाकुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM Avenue Azalé, Moselman, Saint-Jean-Quatre-Bornes, 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्ण सुबनोत जो इंदौर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके मकान एवेन्यू अजाले मोसेलमों सेंट जॉन कैथ्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM

रारोड लिस्काली में रारोड लिस्काली में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री परमानंद उच्चाना जो रामोती के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे संजीव उच्चाना के मकान रारोड लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लासोक जिन लिस्काली की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। लातापी रोड ब्रिजेवियाजिया में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती तारामती लौतन पेदाशी नामजा ग्रुप और जो तारा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके मकान लातापी रोड ब्रिजेवियाजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौदेमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। कौलाबू तेरूज में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बिदवंती नोहर पैदाशी नाम रघुनाथ और जो मोहब्बिया क्वाफ़ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे धर्मसदेव नोहर के मकान कौलाबू तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशन तेरूज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। रारोड पोस्ट फ्लैक में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री नवींद्र सोनाराम जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12:15 उनके मकान रारोड पुस्तफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिमोंग पुस्तफ्लाक की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9:15। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

जी हाँ दोस्तों, शाम का ये टाइम जहाँ पर लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनते हुए लगता है कि भाई जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अंधेरी काली रात के बाद एक उजली सुबह जरूर आती है। सो उम्मीद का दामन पकड़ कर चलती रहेंगे और आपके लिए कुछ खूबसूरत गाने हम चलाते रहेंगे अभी के लिए, तो दिन भर की थकान को दूर करने के लिए और आपके मोटिवेशन लेवल को अप करने के लिए लेकर आए हैं कुछ ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। और ये है आपका अपना प्रोग्राम नई सोच, मैं हूं परी आपके साथ ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, जहां पर आपका और मेरा साथ रहेगा रात्रि के 9 बजे तक। साथ दे रहे हैं आप भी, तो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250 6200 पर। So, जैसे हम कहते हैं जिंदगी में हौसला रखना, हर एक सिचुएशन को हंसकर पार करना, ये हौसला तो मिलता है हमें बहुत सारी चीज़ों से। और कभी कभार जो हिम्मत है वो आप ही के अंदर होती है। और कभी कभार बॉलीवुड के कुछ गाने भी ऐसे हैं जो हमें बहुत सा मोटिवेशन, बहुत सी हिम्मत दे जाते हैं। तो अभी के लिए हमारा ये शो ऐसे ही कुछ गाने आपके लिए लेकर आया है, नई सोच प्रोग्राम ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन, अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक।

और एक ही तो नाम है जो हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिविटी ज़रूर देता है। सभी के लिए ये जो गाना है डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम लोगों के नाम जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। जुबिन नौटियाल की आवाज़, एक और पॉजिटिव गाना, एक और ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के लिए। नई सोच प्रोग्राम अभी से लेकर शाम के 7 बजे तक।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: सवाल थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है ज़िंदगी में. हमें थोड़े की ज़रूरत तो हमेशा रहती है. कभी कभार सपने जो है उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत तो लगती है और किए गए मेहनत का फल मिलता ज़रूर है, भले ही देर से मिले. लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ज़रूर होता है. फल देर से ही मिले लेकिन मिलता ज़रूर है, और अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही होता है. तो अच्छे कर्म करें. और अभी के लिए तो ऐसे ही कुछ प्यारे गाने जो लाइफ में और भी उजाला भर देते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन दे जाते हैं. Once again, it's in the voice of Kishore Kumar, ये खूबसूरत सा गाना. और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं हमारे अगले प्रोग्राम की ओर, जहां पर लेकर आएंगे कुछ रोमांटिक गाने. दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आपके लिए शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन. मैं हूं परी आपके साथ, और साथ निभा रहे हैं आप भी. तो भूलिएगा नहीं आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250600, और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए. गानों को एंजॉय करें एंड हैव अ वंडरफुल टाइम, अ वंडरफुल इवनिंग.

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्यारे गाने. इट्स टाइम फॉर सम सॉन्ग्स जो आपके दिल को सुकून दे और साथ ही साथ दिन भर की थकान को दूर करने के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो. वैसे कहते हैं कि म्यूज़िक तो हर दर्द का मरहम होता है. कभी कभार यू आर फीलिंग सो लो, लेकिन कोई गाना होता है जो आपके मूड को एकदम बूस्टअप कर देता है. जैसे कि हमारा शो था नई सोच, जहाँ पर गाने ऐसे हैं कि दिन भर चाहे कुछ भी क्यों ना हुआ हो, यू आर फीलिंग अ लिटिल लो या फिर आपको थोड़ा सा उदास फील हो रहा हो, ये गाने ऐसे होते हैं कि लगे कि भाई लाइफ में इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ है. हर एक चीज़ का सलूशन मिल तो ज़रूर ही जाता है, और जब सलूशन मिल गया है तो फिर दिल को थोड़ा सा एंटरटेन करना भी बनता है. यानी कि अभी शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कुछ रोमांटिक गानों से हम करने वाले हैं आपका मनोरंजन ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. मैं हूँ परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर प्रोग्राम दिलों की आवाज़. साथ रहेगा आपका और मेरा रात्रि के 9 बजे तक.

0: RM3 Radio.
1: वैसे देखा जाए दोस्तों तो गाने तो खास होते हैं और ये फिल्म तो आपको याद ही होगी। हम आपके दिल में रहते हैं अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू की आवाजें, पिक्चराइज्ड ऑन अनिल कपूर एंड काजोल। दौर था उन फिल्मों का जहां पर कहानी एकदम अलग हुआ करती थी। कुछ ऐसी स्टोरीज जो सीधा दिल तक पहुंचती थी और फिल्मों के जो एल्बम होते थे एकदम लाजवाब, हर एक गाना खास एंड स्पेशल। तो उसी दौर में आपको लेकर जा रही हैं विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, खूबसूरत गाना हमारे सभी दोस्तों के नाम। प्रोग्राम है दिलों की आवाज़, मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक।

0: RM3 Radio.
1: And after Sonu Nigam, it's time ki Abhijeet Dah ki awaaz goonje on the waves of Radio Manoranjan. So well, music is a therapy और इस therapy को हम आप तक पहुंचा रहे हैं. कुछ ऐसे गाने लेकर आए हैं जो आपकी शाम को और भी खास और special बनाएं. हमारे सभी लिसनर्स जो साथ दे रहे हैं on Radio Manoranjan, मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक.

0: एक के बाद एक कुछ लाजवाब गाने आपके नाम साथ दे रहे हैं आप हमारे एमबीसी रेडियो स्टेशन पर और RM3 रेडियो मनोरंजन प्रोग्राम दिलों की आवाज अभी से लेकर रात के 9 बजे तक.
1: You're listening to RM3 Radio Mano.

0: RM3 Radio.
1: तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है और ये है आपका अपना प्रोग्राम दिलों की आवाज। कुछ प्यारे गाने लेकर आए हैं आपके लिए। ये जो गाना है ट्रियोली की दीदी ललिता, कुशाल परिवार के नाम आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा देविना, मालिंगा के अक्षय, विकास कृषय, साथ में है कृषिका एंड लक्षिता, सभी राम रतन परिवार एंड स्पेशली गोज आउट सभी हमारी टीम के नाम सुदेवी जी वाकवा से साथ दे रही हैं। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वीनल साथ दे रही हैं आप, एंजॉयिंग द सिलेक्शन। भाई श्रवण है, भाभी कृति, अभिनव, कियान, नव्या एंड सभी तिलक परिवार, सभी के लिए एक स्वीट सा डेडिकेशन। एंड ज्योति जी साथ दे रही हैं शातो बनारस से। गाना आशनी, रेखा, सुरेखा, सभी मदब परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन। मैं हूं परी आपके साथ रात के 9 बजे तक।

वो पहली बार दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग शान की आवाज एंड इट वाज ऑलमोस्ट फर्स्ट फॉर सॉन्ग्स जहां पर हमने शान की आवाज सुनी और फिर सालों हो गए और आज भी ये आवाज दिल के किसी कोने में छुपी हुई है. आज भी उनकी आवाज इतना सुकून देती है, इतना फील गुड करवाती है. और ये तो है दैट उनकी जो आवाज है उसमें एक बहुत ही गजब का चार्म है जिसे हम सुनना पसंद करते हैं. सो दैट वाज फॉर ऑल द फैंस ऑफ शान जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. और आफ्टर शान कविता कृष्णमूर्ति कुमार सानू की आवाजें, फिल्म है खूबसूरत, एक और खूबसूरत सा गाना आपके नाम. चलिए दोस्तों, साथ रहेगा आपका और मेरा यानी कि परिकार रात के 9 बजे तक.

ऑन रेडियो मनोरंजन कुछ प्यारे गाने लेकर आए हैं आपके नाम दिलों की आवाज प्रोग्राम आपके लिए खूबसूरत सा ट्रैक खूबसूरत सी फीलिंग राइट हियर ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: और जी हाँ दोस्तों, 8:55 और वक्त हो चला है कि परी आपसे ले अलविदा। जाते जाते अनीता जी फ्लिक एंड फ्लैग से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आप। गाना अभी दोस्तों के नाम इंदिरा, श्यामा, मीरा, सिनंद, कविराज, साधना, मालिनी और कविता के लिए, साथ ही रेडियो मनोरंजन टीम के नाम डेडिकेट कर रही हैं ये खूबसूरत सा गाना। सो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी गाने के साथ मैं आपसे लूंगी अलविदा और ये वादा रहा कि आपसे मुलाकात होगी जल्द। तब तक के लिए साथ देते रहिए ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। थोड़ी ही देर में कुछ भोजपुरी गाने होंगे आपके लिए और जाते जाते ये प्यारा सा गीत, ये प्यारा सा गाना हमारे सभी सुनने वालों के नाम, सभी लिसनर्स के नाम।

0: दूसरा नंबर रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
4: 7 days a week 24 hours a day. My, this is Radio Marxus.
5: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
6: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर कमर धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
0: सब संगठन के अजय प्रताप सिंह से तालुक से प्यार भरा नमस्ते और सलाम ये तो मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन रात की 9:03 और अभी से लेकर रात के 11 बजे तो हर पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का थोड़ा मन करता है कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमैया काज जगो देवी जहोवित सांक और चलो शुरू कर लेना चाहिए भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के को बहुत ही जबरदस्त गीत के साथ नंदकेश्वर शंकर के गावल अजब गजब के लोग भाई दुनिया में

0: आज दुनिया में अजब गजब के लोग बात दुख में कोई साथ नहीं देवेला सुख के साथ ही सबके बर दुख में जो साथ देवेला वही सच्चा संगत्या कहलावेला और बेशक ये प्रोग्राम मनोरंजन भी है और शिक्षा प्रद भी और ढेर मना चीज तरह से बांटते जैसे भी और अब बात करें सिगरेट पर इतना हमेशा से जाना कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सिगरेट पीबा तो शरीर के हानि पहुँचेला कैंसर सकेला हो जाए सिगरेट पीला से दिल की बीमारी होला सांस की दिक्कत होला एडिक्शन हो जाला सिगरेट से दांत और स्किन पर असर पड़ेला और सिगरेट पीबा तो शरीर स्टैमिना कम होला और जो सिगरेट है ई सकेला मर्द के नपुंसक भी बना दे इतना गहरा असर बाकर में सिगरेट में कुछ चीज की बोले सर निकोटिन तो बहुत ही खतरनाक पदार्थ और जान के अनजान नहीं बनिया हमने की काम तो लोग के बोले कि अभी तो लोग पर निर्भर है सिगरेट जो ना बहुत खराब चीज है अगला गीत भोजपुरी हमार माँ है खूबसूरत गीत चलावती राजकुमार चिंतामणि की आवाज में गीत चली संजय हरिचंद के उसके पत्नी संध्या बेटी हविश का सब हरिचंद परिवार के लिए पिताओं से गीत चलावती से रतन निहाल के नाम रहरन गांव बे पत्नी करुणा पापा विजय और सब निहाल परिवार के नाम और है गीत संगीता मीरन के नाम चलावती से है गीत संगीता मीरन के ओर से रीता सीतालू के नाम
1: भोजपुरी हा हमर माँ

सगत है लोगों की तो सब को जाना कि भोजन हमने के शरीर खातिर बहुत महत्वपूर्ण है पर रात के भोजन की बात करब सर रात के भोजन चाहिए हल्का रहे के पौष्टिक और आसानी से पचाने वाला भोजन बहुत ज्यादा तेल मसाला हैवी खाना नहीं चाहिए गो हल्का फुल्का डिनर जैसे कि दाल रोटी सब्जी सूप या खिचड़ी या और कुछ पकेले हुआ रात के खाए खातिर तो अगर में ज्यादा तेल या जेपी से सब नहीं डलिया कर तो हर चेहरे को बैलेंस डाइट दिन खाए के जो में प्रोटीन विटामिन और फाइबर के संतुलन चेहरा रहेगी और सुते से पहले दो तीन घंटा पहले भोजन कर लिया रात के भारी भरकम भोजन नहीं कर लिया जैसे भात नहीं खाए के या रोटी नान ये सब नहीं खाए के लाइट मान ला थसुन सब्जी भाजी बन ला भाजी भून लिया हुआ एक पिटी बुट गोश बा थोड़ा सुनला सूप और एक बोल सलाद काफ़ी बा अब जब कहे कि रात की वजह से हल्का फुल्का भोजन करके कहे कि रात की जब हमने के शरीर सुतेला तो कालोगी नहीं जरावेला वो खाती वजह से रात के चेहरा हल्का फुल्का भोजन करके ऊपर से अलावा एक वो है कि हमने की डाइजेशन अच्छा तरह से होला और रात के सब अच्छी तरह से सूते तूफे नहीं हुई बा और जब भोजन कर ले तो तेजी जाके नहीं सूतिया एक एक घंटा या एक घंटा आधा लेता सुन लामाउस करिया फिर एक भोजन करला के बाद एक घंटा लामाउस के बाद तब जाइए सूते खाई बाकी जब बच जाए तब और ऐसे में चलाओ सा अगला गीत और है गीत है अनिता जी के नाम अपन फ्ली कॉम्प्लेक्स और है गीत चली रोशन है गीत चली माधुरी खातिर और रोशन भाई खातिर मीरा खातिर भी है गीत चली तो गीत है किशोर खिमिया के गावल है गीत चलावती इस संजय बिहारी की ओर से सब परिवार के नाम

0: मांग के सिंदूर बा बड़े शोभिल। और जब सिंदूर की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति में मांग के सिंदूर के विवाह के को महत्वपूर्ण प्रतीक मानल जाला। वैवाहित महिला लोग अपन मांग में सिंदूर डालेला अपन सुहाग के लंबी आयु के लिए। और सिंदूर के महत्व है विवाह के एगो प्रतीक है। ये बतावेला कि वो महिला सिरी बातें नहीं है, वो शादीशुदा है। प्रेम और समर्पण के प्रतीक है सिंदूर। सांस्कृतिक परंपरा हिंदी रीति रिवाज और परंपरा में सिंदूर के विशेष स्थान बा। और शुभता का चिन्ह के सौभाग्य और मंगल के प्रतीक मानल जाला। जो महिला पर मांग में भर मांग सिंदूर डालेला। और श्रृंगार के को हिस्सा है सिंदूर। महिला के पारंपरिक श्रृंगार के सुंदर बनावेला। और एगो शादीशुदा महिला जब अपन मांग में सिंदूर डालेला तो वो अपन मन में बोलेला कि हम जैसे सिंदूर डालते जाए हमार मांग में हमार घरवाला की आयु भी उतना ही लंबा हुई। ये खातिर सिंदूर के बहुत ही महत्व हिंदू धर्म संस्कृति और परंपरा में। अब जनला ना रात के 9:25 और अगला गीत कंट्रोलर बाबू मुकेश रामेश्वर की गावल गीत है। गीत चार दिस बनमाली सास बनमाली जी के नाम कर पत्नी बेटा बेटी दामाद और सब बनमाली परिवार के नाम शास्त्री बनमाली के नाम है प्यारा संगीत कंट्रोलर बाबू।
1: ठहर जा मौसी ठहर जा उतरे द मौसी उतरे द जगह नहीं बा मौसी विश्वा में जगह नहीं बा।
2: ले ला बाबू ले ला तू घंटा से खड़ा है खरे खरे ले ला।

Ratke Nobotki Chontes Minet, or Tusnato MBC Radio, Radio Mandaranchen, Radio Mauritius, Bochuri Terka program, or Bodilasaki, Rojki, Kamta Rehira, per Kamke Satsa Tora Aram Bichera, Kaike Likojanego Machine her, the Chera Kitrasan Aram Bidik, Dinver Kamkerwa, Ratke Aram Karia, Chacha Gilsunia, Chacha Program Sunia, MBC Radio Mauritius per. और अगला गीत सास बहु तुलसी सास बहु की कहानी सुनाओ तो अभिमन्यु हरिपोल माहेन रही गीत और मिजराती सा चंपा जी की नाम चंपा राम गत्या देवी राम गत्या और कुल की घरोला लेकर सब राम गत्या परिवार की नाम चले एक साथ सुने सास बहु तुलसी की कहानी

मसाला हल्दी जीरा ये सब की जब बात करी रहा सा तो हमने की याद आवा था कि जब फ्रेंच लोग आ रहा हमने की टापू में तो हमने की टापू के नाम दलन सा इल दे फ्रांस कोलोनाइजेशन करा था लन सा तो पियर पुआव आ रहा ला फ्रांसे तो ऊ जी पुआव ने रहा तो जितना भी जेपीस में हमने की देश में इस्तेमाल करी रहा सा थे कोलोनाइजेशन की पीरियड में आ रहा और ये सबसे आज हमने की देश में इतना जेपीस बा रात के 9:50 तू सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन और प्रोग्राम भोजपुरी तर का अगला गीत हाथों में हाथ किशोर की मियाँ की गावल गीत और है गीत सुदेवी जी के नाम चलावती से बहुत प्यार से सुदेवी हवन वाकवा से गीत चला देता त्रियोले की दीदी ललिता कुशल और परिवार आत्माराम चचा खातिर सुनीता शोभा देवीना मालेंगा के कृष्णी कृषय कृषिकाल लक्षिका और सब रामरतन परिवार के नाम और है गे चली संगीता की ओर से दादी प्रभावत

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर कमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
2: रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस दोनों चैनल पर चलता प्रोग्राम भोजपुरी तड़का अजय प्रताप सिंह सीतालू के साथ रात के 11 बजे ले आज है बुधवार की रात 13 मई 2026। हाँ, ठंडा के मौसम में बुझाता प्रवेश कर ले नहीं सका है कि ऑफिशियली कैंस में यानी कि और दो दिन में ऑफिशियली विंटर में हिल्ड अप सफर बुझाता ठंडा के मौसम है इसका बकाया कि दिन के पानी पानी कर ले रहेगा और फजीर के बगैर 6 बजे इतना अंधार इसी वजह रात बा सूरज उगेला 6:30 के बाद और शाम के 5:30 ही अंधेरा छा जा रहा चारों ओर एक मतलब है सर्दी के मौसम चलाल बा तो अपन त्रिको जैकेट टुकेट पोलो ये सब किन लिया और जोन जगह ठंडा करेला तो वहाँ चाहे जरा प्रिकॉशनिक की जैसे कि फॉरेस्ट साइड बा क्योपी बा मोका लाफलोगा गाँव बा ये सब जगह में बड़ी ही ठंडा गिरी रहा हूँ कि नहीं। तो रात के 10:05 होता है और अगला गीत नानी लोकनी जाय की बा है गीत अच्छा लगा था इस खासम खास सरिता जी के नाम सरिता जी हवन कैटोबोन से और फिर मैनेज कर ले हवन कर सब परिवार खातिर सरिता गीत तो और खातिर तो सब परिवार के नाम है कि चलाओ जी सब अध्यापक और स्टूडेंट्स लोग के नाम जो रात के वक्त हमके सुना था और जैसा कोई नाइट शिफ्ट करता है जैसे कि मेट्रो सर्विसेज में पुलिस पोस्ट में और कॉल सेंटर में और जहाँ कहीं भी रात के काम होता है जैसे क्लिनिक बा लोपिताल बा थे वाला जगह में विराल जिन जिन में काम होता है बेकरी में तो जितना कोई हमने सुना था काम करते हुआ सर काम करवा लोग बहुत खुआस बुलाते मेहनत लगन से काम करते रहे अभी थे कोई नाइट शिफ्ट करता काल फजीरे काम करें सर 6 बजे रही तो सबको खतरे लग लगे नानी लोग नहीं जाए कि बाब नानी लोग नहीं जाए कि नहीं चलो एक साथ सुने

हर देश अपन खाना से उजाना उजाला, पाकिस्तान जाना जाना कर बिरयानी से, और इटली जाना जाना कर पिज्जा से, और मॉरिशस जाना जाना कर चिपूड़ी सेट कागी से। हम यहाँ चिपूड़ी बनेला, फागाता बनेला ना, और रोटी जब बनेला, रोटी की बात बताती सर, जैसे वच्ची बनेला सर, तो आटा पानी और तेल नमक से बनेला, और रोची जैसे बनेसा क्या पराठा जैसे बनेसा, वो मसाला के तकारी से खाएगी बड़ी मजा बा, हाँ कि नहीं। तो आगे हमने के नानी दादी लोग के जमाना में ये सब वो सब नहीं रहल, चूल्हा रहल, तब एगो परिवार में 10 को लेकर रहल, ओकर में माँ बाप साथ में 12 को जना। अब जब रोटी पकी या पराठा पकी तो 4 को नहीं पकी, थौत काहो 30-40 पराठा पकी रोज के। तो आज के महिला के बल्ब से थौत काहो पराठा पकाई के पकाइन सर बाप बोले तो बेलना से मारे लगे कि प्रणी प्रताप जी कहाँ समय मिलेगा पकाए के हो, ऐ अभी के महिला लोग काम करेगा। पर अगर थोड़ा मन करे खाए के पुरुष लोग, तो अपन हाथ से पका लिया भैया खाए के।

बनाई कि हम कर दे रहा कहे कि पत्नी काम करे रन तो चेहरा मदद करे कि ना और पकैला में शर्म नहीं बाए कैसे खाईला जब सकते से खाए तो खाए में शर्म नहीं तो पकाए कि शर्म बा तो कभो कभो सकबा को छपके दे दी फौजी के फौजी काम से आते गर्मा गर्म पकाता तकारी पका दी बा तकरिया पकाता में डाल के दे दिया एक और एक गर्मा गर्म चाय की प्याली तो भौजी खुशी हो जाए तभी राजेश को गावतोन अखी नानी रोटियां पका देगी रोटियां पका दे तो जितना कोई खुशा होची फादा खाई के गीत तो लोग के नाम खासम खास विनय भाई के नाम विनय अवंतरियोले से और है गीत चलावती सब आफेज के नाम आफेज अवंत सैम्पिया से और है गीत चलावती सब विमला के नाम विमला वन थाबुचिक से निशान सिंह चुबा स्कारी से निशान सिंह चुबा हूँ थाबुचिक से कर पत्नी बेटी पतो बेटा निशान सिंह चुबा हूँ थाबुचिक से कर बेटी दामाद बेटा पत्नी और सब चुबा परिवार के नाम चाचा आत्माराम है गीत थोड़ो खातिर अगे नानी रोटी व पका दा

अब चली लुगारू के गीत लुगारू घर के पाचे लुगारू मचान पर त लुगारू की कहानी शुरू होल कैसे चला थोड़ा सुनाओ अब जा त साइगो तूफान आ रहल को नाम रहल होलांडा ई मॉरिशस के जबरदस्त तूफान रहल या रहल फरवरी 1994 में 1994 में तूफान आ रहल और है तूफान जब आ रहल त काफी तबाही मच रहल 10 फरवरी 1994 में मॉरिशस में प्रहार करे रहल इस तूफान के गुजरला से हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहल बहुत घर टूट गरल और बिजली टेलीफोन सेवा सब ठप पर रहल गन्ने के खेत त सब नुकसान भर कृषि के भी खूब नुकसान पहुँचल रहल पोर्टिस में तेज हवा झोंकों के साथ बह रहल त है होलांडा के तूफान के बाद मॉरिशस में एक महीना ले ब्लैकआउट रहल यानी कि बिजली नहीं रहल तो एगो गाँव रहल लालमाटी त सुनात रहल कि जब ब्लैकआउट रहल तो वहाँ लुगारू हो तब लुगारू कौन चीज सुना रहल है का जिन कहानी सच है कि वो आधा इंसान और आधा जनावर रह और वो सकेला कोनो भी फोम लेके गर्मी घर में हिल जाए और आदमी लोग के डरावे तो उन दिनों सब कोई अपन द्वारी में प्यन दैन प्लौत तलन से लुगारू घर के पाचे तभी ही गीतवा निकल रहा है लुगारू राधन राम सहा गीत आगे भोजपुरी बाजा बाजे ग्रुप बॉयज गीतवा निकल लुगारू तो चल आज की रात ही गीतवा सुनब जा लुगारू और एक गीत चलावती सर खासम खास रंभाज के नाम आप हो लास्वी से अजय और पूनम चिंता राम ऑस्ट्रेलिया से और दुगो बेटा बाल गोपाल खातिर सुदेश जसवा है गीत और खातिर तुम माता जी राजकुमारी जिमी दुखिया है गीत सब दुखिया परिवार के नाम और राज मन्ना है गीत और खातिर लुगारू

बुलाल जला की एगो छोकरी अगर श्रृंगार करी सज धज के आई तो सके एक्ट्रेस के मार दी। आजकल तो हमने के छोकरी लोग पढ़ा लिखल बा और खुशी रहन से शादी उदी में जाए के खूब सज धज के एक्ट्रेस सीखा। करीना कपूर लिखा, बियोलन से बिपाशा बासु लिखा, तो जरूर हमने के जन खूबसूरत लड़की लोग बा और जोड़ी से आबियो के जालन से तो सुंदर परी लिखा लोग खेलन से जे बस शादी में तेरे मौके करिया है। हमने के जैसे छोकरी लोग सीना लोग बा खूब जोड़ी से जैसे एक्ट्रेस तो काबी होलन से हमने के टी वी सीरियल जैसे अनुपमा बा सास भी कभी बहू थी या एक रिश्ता, तो

ओकर से जस्ती जोली छोकरी हमने के देश में बारिश जोली से आबी है वलन सर हो कि नहीं ताई इसने छोकरियों के देख देख के गिरीश रूपचंद ने गीत लिख रखा बस सुंदर परी तो सब सुंदर परी सब हमने की बटरफ्लाई लड्डू लो के नाम है गीत है चरावती से बहुत बहुत प्यार के साथ सुंदर परी और गीत सुनन चितंकी के नाम और सब परिवार खातिर बहुत प्यार के साथ भाई धनी वन कुलिनी से गीत हो रो खातिर और हे गीत चरावती से सब सुंदर परी लो के नाम जो हम की सुनत जन खुशी से खूब आबियो के चमक दमक के जालन से काम करे या शादी में या निवेश में जो छोकरी खूब खुश आबियो के है गीत ओलो खातिर सुंदर परी चले एक साथ सुने

0: साथी प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमर धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: स्ट्रेस से भरल संसार में स्ट्रेस से दूर रहे खातिर हमने की चाहे रोज के हंसे के जोर जोर से हंसे के एक हमने बढ़िया सा लॉफ्टर थेरेपी

ता एगो ऐसन गीत चलाओ सब एक गीत वा सुन बता हंसते रह जीबा बेटवा उजर कैसे होगा नीरज गुप मधु कहानी सुनावा था बपुआ सावर बा मयुआ सावर बा ता लेकवा कैसे उजर निकल गल इतना हमने जानते कैसे लेकवा से निकल गल चल एक साथ सुने अरे गीत वा सुनाओ सर हंस सब सर जोर जोर से ताकि हमने के सब स्ट्रेस दूर हो जाए और है गीत चलाती सर स्वीटी और स्वीनी खाती जो बहुत प्यार से हमने के सुना था चल एक साथ सुने नीरज गुप मधु की कहानी बेटवा उजर कैसे निकल गल हो आहा।

Yeah.

Oh, my God.

आशा करते हैं तू भी खूब हंस रहा। हमने किसी के गीतवा सुन के बाप सांवर माँ सांवर लेकर कैसे उजर निकल गए भैया। रात के पौने 11 बजे तक तू सुनो तो भोजपुरी तरकार प्रोग्राम हमने के संगे संगे। और जब हमने संगीत की बात कर रहा था तो नृत्य भी आवेला नाच तो जो नाच है नृत्य हमने के जीवन के बहुत ही हमने के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। ये केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि कला है संस्कृति और भावना के व्यक्त करेला नाच। नृत्य करने नाच करला से शरीर स्वस्थ और चुस्त रहेला और ईगो व्यायाम भी है। देख करके जुम्बा बोलेला नृत्य के और करेला सभी जुम्बा ई शरीर में ऊर्जा लावेला। और जब हमने डांस करी रहा सा नृत्य कर नाची रहा सा तो मन और मूड एकदम सेट रहेला। तनाव और चिंता से बचे खातिर चाहेला कोनो न कोनो प्रकार के नृत्य करेगी। भारतीय संस्कृति में नृत्य के विशेष स्थान बा। भरतनाट्यम कथक ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्य हमारे की परंपरा के है। आजकल तो पॉप डांस बा टेक्नो डांस बा डिस्को डांस भी बा तो रमन करी कोनो भी डांस सीखेगी तो सब यूट्यूब पर सीखे। और नृत्य है जो नाच जो डांस है वो हमने के आत्मविश्वास बढ़ावेला। मंच पर प्रस्तुत जब जाहिर सा प्रस्तुति करे सब दर्द भय की निकाल के तो हमने मन खोल के दिल खोल के नाची रहा सा। जब थोड़ा भी कोई तनाव रही तनाव भगाए खातिर अपन रेडियो दलिया जोर से और हमने के संगे नचिया सब स्ट्रेस दूर भाग जाए। नच दे जल्द सा होवेला कुनाल हीरलाल के साथ।

रात की 10:50 हुआ था और 10 मिनट में ही प्रोग्राम समाप्त हो जाए भोजपुरी टटका। ये प्रोग्राम चले लिंदी से लेकर दिमाग ले एमबीसी रेडियो, रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर रात के 9 से 11 बजे ले तो लोग के मनोरंजन खातिर खा के जाने से उनकी देश में ढेर कोई भोजपुरी भाषा बोलेगा, लिखेलन सही भाषा में गीत लिखाला, कहानी, उपन्यास, नाटक भी और यानी हम की जो भोजपुरी भाषा ये हमनी के धरोहर है, हमनी के धर्म संस्कृति के एगो अंग है। और जब भोजपुरी गीत चले तो गमट ही गमट होला कि याद भाई आगे के ज़माना में जब सामदी से शादी हुई तो सुख के गीत गवाए तो सामदी के हल्दी और फिर गमट के रात सब कोई अपन अमोनियम ताबला लेके आयंस और रात के खूब गमट हो जाए। सामदी की रात के 6:30 से लेके रात के 12 बजे ले गमट ही गमट। और आज के गमट को आज भी गमट होला शादी उदी में जेबत सामदी के रात के दिमाग की सुख के गीत गवाए कि गमट सामदी के हल्दी के बाद की गमट और तिमास के जब दुलीन चला तब गमट और लेंदी के चौथारी हो गए तब गमट। हम तो रोज गमट करे भैया चैना गमट करे कि गमट कर बता तो मूड अच्छा रही और तू प्रसन्नचित रह हमेशा खुश रह। ललिता गजाधर गीत गावत हवन आज के गमट और है गीत चाहती से सब संगत आलो के नाम जिन खुशी रहा हमरे लेखा गमट करे की। और आप हवन वेद साहब फिर विशाल और है गीत शालिनी की ओर से कर घर वाला विशाल होकर दुगो बेटी और सब हीरो परिवार के लिए जो इन वाकवा रहे सुलमा दुखित हवन मी बैग से होकर बेटी हन्ना नबीहा और सब दुखित परिवार के लिए वीना कुपुसामी है गीत और खाती तो और घर वाला तो हर बेटा पतो बेटी और सब कुपुसामी परिवार के नाम विश्वानी बाबूलाल हवन लाखोजा से गीत तोहर कहती है तोहर घर वाला तोहर लड़का लोग कहती है सब बाबूलाल परिवार के नाम। और हम की आवाज़ दुनिया में जहाँ तक पहुँचता है कोनो कोनो देश में फजीरो गलबा गुड मॉर्निंग कहूँ कहूँ पर शाम के वक्त बता गुड इवनिंग और यहाँ पर ही रात बात गुड नाइट बोलते ही सर। तो चल एक साथ सुने गीत आज की गमट कैसे गमट हुआ था एक साथ कमरवा डोलाओ से गमट में

सुकन्या लीलो माथुर रामतो हो बिजवंती के गावल गमत करे जाइला आई गीतों के संगे भोजपुरी तरका प्रोग्राम यहाँ पर समाप्त हुआ था रात के 9 बजे से हबीलियम के साथ ही रजा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो लोग के SMS तो लोग के फोन खातिर बहुत बहुत धन्यवाद अभी रात की 11 बजे सुन बजा गिनीशा से प्रोग्राम सुनने पर और रात के 12 बजे से कल फजर के 6 बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तरह नहीं हमने की तो लोग मुलाकात हुई कल बिफे के सांझ

चार से पांच बजे रेडियो मनोरंजन पर दिल से मिले दिल प्रोग्राम में तकल तक हमने की इजाजत दे और जय प्रताप सिंह सितारों की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल गॉड ब्लेस नमस्ते

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: गिनिशा फिर से आ गई है आपका साथ देने के लिए इन योर सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। सो गुड इवनिंग जी, नमस्कार और हमारा प्रणाम। कैसे हैं हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, उम्मीद करते हैं आप ठीक हो। वैसे आज फिर सजेगी एक सुहानी म्यूजिकल महफिल, जहां पुराने बॉलीवुड गाने देंगे दिल को सुकून और चेहरे को मुस्कान। सुनहरे पल, एक शो जो सिर्फ सुना नहीं करते, महसूस किया जाता है। हियर वी गो, ये खास कर आपके नाम।

वैसे हर गाने के पीछे होती है एक याद, मानो या ना मानो, हर गाने के पीछे होती है एक याद, एक एहसास, एक कहानी। और उन्हीं खूबसूरत कहानियों को फिर से जीने के लिए सुनिए सुनहरे पल, सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

पुराने बॉलीवुड के गाने और वो दौर, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ना। पुराने बॉलीवुड गाने और वो दौर जब म्यूजिक सीधा दिल से निकल कर दिल तक पहुंचता था। तो चलिए फिर से जीते हैं वो सुनहरे लम्हे सुनहरे पल के साथ सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर, और उम्मीद करते हैं कि अगला गाना सीधे आपके दिल तक हम पहुंचाएंगे।

कैसा लगा ये खूबसूरत सा सफर जो हम आपके लिए लेकर आते हैं हमेशा रेडियो मॉरिशस पर रात के 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, काम पे हो, ड्राइव कर रहे हो, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो तो अगला नगमा खासकर हमारी तरफ से आपके नाम। तो चलिए दोस्तों, ये अगला गाना गिनिशा की तरफ से स्पेशली हम आपके नाम डेडिकेट करना चाहेंगे एंड टू ऑल दोस हु आर ट्रूली मैडली डीपली इन लव। अरे यादों के साथ ही सही लेकिन प्यार तो है ना जी। तो चलिए ये अगला नगमा खासकर आप एंजॉय कीजिए और वो भी दिल से।

हम फिर से वापस आएंगे? ऑफ कोर्स मेरी जान, जाएंगे तब भी तो आएंगे, फिर भी हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आप बस यूं ही मुस्कुराते रहे एंड कीप ऑन स्प्रेडिंग लव, और बस सुनहरे पल में हमारा साथ यूं ही देते रहे। शुभ रात्रि, शब बखैर।

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: Assalamualaikum.
3: Kim Chumarishyas.
4: Namaskar.
5: Shotrandariki Hrudaya Purvaka Namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum Vanakkam.
7: Radio Marches par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: Radio Marches.
9: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
8: रेडियो मॉरिशस
9: रेडियो

0: amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो